अभी आप निर्मला देवी का गाया ये भक्ति गीत सुन रहे थे। श्रोताओं, प्रभाती वंदना कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं नाथ। आवाज़ है मोहम्मद सफ़ी नियाजी कव्वाल की।

0: महेंद्र कपूर के गाए इस नात के साथ ही प्रभाती वंदना कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं एग्रीटिप्स कार्यक्रम।
1: किसान भाइयों, आज हम कुछ बातें करेंगे उर्वरकों के प्रयोग के बारे में। उर्वरकों का सही चुनाव हम कैसे करें और इसका इस्तेमाल किन किन बातों पर ध्यान में रखकर हमें करना चाहिए। उर्वरकों की सही मात्रा फसलों की आवश्यकता और मिट्टी से पोषक तत्वों की होने वाली आपूर्ति पर निर्भर करती है। किसी खेत में उर्वरक के इस्तेमाल का आदर्श तरीका यह है कि मिट्टी परीक्षण द्वारा उर्वरकों की आवश्यक मात्रा की जानकारी प्राप्त कर ली जाए। कभी कभी खेतों में फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते रहते हैं, फिर भी हम उर्वरकों को मृदा परीक्षण कराए बिना जमीन में डालते हैं। इस प्रकार उर्वरक पर खर्च किया गया धन व्यर्थ ही चला जाता है। साथ ही उर्वरकों की आवश्यकता से अधिक मात्रा फसलों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। अतः मृदा परीक्षण के द्वारा हम दोहरी हानि से बच सकते हैं, क्योंकि मृदा परीक्षण के आधार पर ये पता चल जाता है कि किस फसल के लिए किन किन उर्वरकों की कितनी मात्रा की ज़रूरत होती है अथवा किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मृदा परीक्षण उर्वरकों को देने में हमारी काफ़ी मदद कर सकता है। कभी कभी नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश उर्वरकों की आवश्यक मात्रा डालने पर भी फसल उत्पादन संतोषजनक नहीं होता, जिसका कारण मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है। अतः मृदा परीक्षण के आधार पर ही अधिक उत्पादन अथवा लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। इन बातों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि खेत की मिट्टी का परीक्षण करना अत्यंत ही उपयोगी व लाभप्रद है। उर्वरकों के सही इस्तेमाल के लिए इनका कुशल चयन भी जरूरी होता है, ताकि कम से कम लागत पर हम अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त कर सकें। चूंकि उर्वरकों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अतः उर्वरक का चुनाव व प्रयोग मिट्टी के स्वभाव व गुण के अनुरूप करना चाहिए। मृदा परीक्षण के बाद जिस भूमि में जिस तत्व की कमी हो, उस भूमि में उसी तत्वयुक्त उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। अम्लीय मिट्टी में नाइट्रोजन धारी उन उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जो भूमि पर अपना क्षारीय प्रभाव डालें। ऐसी मृदाओं में नाइट्रेट, घुलनशील फास्फेटिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। रेतीली मृदाओं में जैविक खादों का अधिक से अधिक इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे कि पोषक तत्वों का जो नुकसान होता है, जो कि लीचिंग के द्वारा, निक्षालन के द्वारा होता है, वो कम से कम हो। कम अवधि की फसलों को शीघ्र उपलब्ध होने वाले उर्वरक देने चाहिए एवं लंबी अवधि की फसलों में धीरे धीरे पोषक तत्व प्रदान करने वाले खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग होना चाहिए। जो क्षेत्र नम होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में कैल्शियम व मैग्नीशियम युक्त यौगिकों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस दशा में मृदा में इनकी कमी होती है। मिट्टी में फास्फोरस की अत्यधिक कमी की दशा में पानी में घुलनशील फास्फोरस धारी उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। खेत में जो फसल हम उगाने जा रहे हैं, उसमें पहले कौन सी फसल उगाई गई थी तथा उसमें कितनी मात्रा में खाद का प्रयोग किया गया था, खेत खाली था या नहीं, आदि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही खाद एवं उर्वरकों का चुनाव हमें करना चाहिए। उर्वरकों का प्रयोग करते समय और भी कुछ एक बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे कि इनका प्रयोग किस समय पर किया जाए तथा प्रयोग करने की कौन सी विधि होनी चाहिए। इस बारे में हम अपने कल के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे।
0: अभी आप एग्रीटिप्स कार्यक्रम सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। नेपाल में कल आए भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और एक दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण हिमखंड फट जाने से ये आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं के 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस चुनौती के सामने नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779701705000। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिगाजी टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और सैनिकों को इस लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हो गए हैं। वे मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा आयोजित समूह में गए थे। इस समूह को कल नेपाल तिब्बत सीमा पार करनी थी, लेकिन अचानक आई बाढ़ से उनसे संपर्क टूट गया और अभी तक किसी का कोई पता नहीं चला है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी DGP इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी बाल्मीकिनगर जाऊंगा।
0: इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी कालीघाट, लिटिल अंडमान का निकोबार चौरा, तेरेसा, कचाल और ननकौड़ी होते हुए कैमल बे की यात्रा पर आज सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान 30 तारीख को दोपहर 12 बजे कैमल बे से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। लिटिल अंडमान के लिए एमवी भारत सीमा आज सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान आज ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापस चलेगा। एमवी बाराटान माय बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल 28 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और जलयान परसों यानी 29 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर माय बंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। नालंदा जलयान लिटिल अंडमान के लिए कल 28 तारीख को रात 9 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और इस जलयान की वापसी परसों यानी 29 तारीख को सुबह 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप जाने के लिए एमवी जॉली बॉय आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और आज ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप के लिए आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान आज ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और आज ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और इस जलयान की वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान कल यानी 28 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत जाने के लिए एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल 28 तारीख को सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापस छूटेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी रानी लक्ष्मी कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से जाएगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप जाने के लिए कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापस चलेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी रानीचंगा कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 6:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

श्रोताओं नमस्कार। चंदा एक ऐसा प्यारा सा शब्द जिसे सुनते ही मन में बचपन की मीठी यादें ताजा हो जाती हैं। माँ की गोद में सुनी लोरियां, दादी नानी की कहानियां और आसमान की ओर देखकर चंदा को निहारना, इन सब में चंदा कहीं ना कहीं हमारे साथ रहा है। कभी चंदा बच्चों का प्यारा साथी बनता है, कभी प्रेम की निशानी और कभी किसी की यादों का खूबसूरत बहाना। आज उसी चंदा को ले आए हैं हम, जिनकी कहानी सुन और उन्हें निहारते हमारा बचपन बीता।

0: है तू।
1: कितना खूबसूरत था बचपन का वो समय, जब चंदा हमारे लिए सिर्फ आसमान में चमकने वाली कोई चीज नहीं, बल्कि हमारा चंदा मामा हुआ करता था। माँ प्यार से कहती थी, देखो चंदा मामा आए हैं। और नन्ही आंखें आसमान में अपने उस प्यारे से चंदा मामा को ढूंढने लगती थी। समय बीतता गया, बचपन पीछे छूटता गया, लेकिन चांद से जुड़ी वो मासूम यादें आज भी दिल के किसी कोने में सुरक्षित है।

बड़े होने के बाद भी चांद हमारी भावनाओं का हिस्सा बना रहा है। कभी किसी की याद में चांद को निहारते हुए मन मुस्कुरा उठता है, तो कभी कोई गीत सुनकर चांद से जुड़ी कोई कहानी याद आ जाती है।

तो श्रोताओं, चांद हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, कभी कभी आसमान की ओर देखना, देखकर अपने बचपन को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ यादें उम्र के साथ पुरानी नहीं होती, बस वे हमारे दिल में

0: और भी खूबसूरत हो जाती हैं। तो श्रोताओं, आज के इंद्रधनुष कार्यक्रम में लेते हैं विदा, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।
2: अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे, जो केंद्रित था चंदा शीर्षक पर। प्रस्तुति थी देवकी की। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब आप सुनेंगे रामचरितमानस गान की 343वीं कड़ी।

सवेरा होते ही रावण एक बार फिर युद्ध के लिए आ पहुंचता है। वानर भालुओं की सेना विकराल रूप धारण कर उस पर टूट पड़ती है। विभीषण को रावण के न मरने का रहस्य मालूम है। उसकी नाभि में अमृत है। विभीषण से ये भेद पाकर श्री राम ने जैसे ही वाण संधान करना चाहा कि चारों ओर भयावह अपशकुन होने लगे।

अभी आपने सुना रामचरितमानस गान की 343वीं कड़ी। गायक कलाकार थे ए हरिहरन तथा संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं वतन के गीत कार्यक्रम।

स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। उधर मछुआरों को विशेष चेतावनी में कहा जाता है कि खराब मौसम के कारण अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। अतः मछुआरों को 30 अगस्त तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। ये था मौसम का हाल। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। सवेरे 7:15 पर सुनिए फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर सुबह 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर पूनम त्रिपाठी के साथ ली गई भेंटवार्ता, विषय होगा पृथ्वी के महासागर। सुबह 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकार होंगे वत्सला मेहरा और अनुराधा पौडवाल। तराने सुहाने कार्यक्रम का आनंद लीजिए सुबह 9 बजे। सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप एम बाला मुरली कृष्णा का कर्नाटक शैली में गायन सुनेंगे। SMS माई चॉइस कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10 बजे, दिन में 11 बजे प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 11:30। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में आज आप कुछ फिल्मी गीत सुन पाएंगे। मलयालम कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे ए हरिहरन, गुलाम अली, रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर। आपके नाम फिल्मी पैगाम फरमाइशी फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम होगा दोपहर 1:30 पर। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी और प्राइमरी चैनल पर पहली सभा की समाप्ति के बाद FM 100.9 MHz पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें आप नॉनस्टॉप म्यूजिक का आनंद लेंगे। और दोपहर बाद 3:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। निकोबारी कार्यक्रम के साथ हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे, जिसमें मूस विलेज के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गीत सुनवाए जाएंगे। शाम 4:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। शाम 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम में शाम 5 बजे कृषि पर आधारित कार्यक्रम होगा वेलन उलगम। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में सुनिए महिलाओं के लिए कार्यक्रम चिरंतनी। किसानवाणी कार्यक्रम में संध्या 6 बजे आप सुनेंगे आटम पहाड़ की ममता कुसुम के साथ की गई बातचीत, विषय होगा केले की खेती से लाभ। शाम 6:30 पर सुनिए महफिल कवाली कार्यक्रम। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे संध्या 7:15 पर। संध्या 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत संध्या 7:30 पर पत्रिका कार्यक्रम होगा युवा संसार, जिसके तहत आप सुनेंगे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पर रूपक और झील प्रकृति का एक महत्वपूर्ण अंग विषय पर वार्ता। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात 8 बजे। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार तत्पश्चात गौरव गान। और रात्रि 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेश आते हैं, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के तहत कुछ देश गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 में हैं। लीजिए सुनिए मौसम की जानकारी, तत्पश्चात कार्यक्रमों का विवरण।

पहले सुनिए मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक दो

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। लीजिए अब सुनिए जन सूचनाएं।

इसके अंतर्गत पहले सुनिए मौसम की जानकारी। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 18.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 95% तथा न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 28.5 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:09 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:32। ये थी मौसम की जानकारी। अब एयर इंडिया से प्राप्त उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 सवेरे 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान संख्या 2936 सुबह 11:40 पर श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। अभी आप एयर इंडिया से प्राप्त उड़ान संबंधी जानकारी सुन रहे थे।

श्रोताओं, हम आपको पुनः बता दें, प्राइमरी चैनल और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर पूनम त्रिपाठी के साथ ली गई भेंट वार्ता। विषय होगा पृथ्वी के महासागर। सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप एम बाला मुरली कृष्णा का कर्नाटक शैली में गायन सुनेंगे। SMS माई चॉइस कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10:00। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम में आप कुछ फिल्मी गीत सुन पाएंगे और मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12:30।

0: तमिल कार्यक्रम में शाम 5 बजे कृषि पर आधारित कार्यक्रम होगा वेलन उलगम। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में सुनिए महिलाओं के लिए कार्यक्रम चिरंतनी। किसान वाणी कार्यक्रम में संध्या 6 बजे आप सुनेंगे आटम पहाड़ की ममता कुसुम के साथ की गई बातचीत, विषय होगा केले की खेती से लाभ। युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत संध्या 7:30 पर पत्रिका कार्यक्रम होगा युवा संसार, जिसके तहत आप सुनेंगे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पर रूपक और झील प्रकृति का एक महत्वपूर्ण अंग विषय पर वार्ता। जन सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। माई भारत की ओर से द्वीप समूह के दो शैक्षणिक संस्थानों में खेलो इंडिया संवाद का आयोजन किया जाएगा।

हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर कल से 30 अगस्त तक राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाएगा और मंत्रालय की ओर से लोगों से जरूरतमंद टीबी रोगियों की मदद के लिए टीबी मुक्त भारत ऐप डाउनलोड करने की अपील की गई है। सुबह के समाचारों के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल है। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत माई भारत की ओर से आज खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सामुदायिक सभागार में सुबह 10 बजे आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य प्रकाश अधिकारी होंगे। कार्यक्रम में लगभग 100 युवाओं के भाग लेने की संभावना है। वहीं दूसरा कार्यक्रम सुबह 10 बजे डॉलीगंज स्थित डॉ. बी.आर. अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में रखा गया है, जिसमें लगभग 500 युवा शामिल होंगे। इस अवसर पर सांसद बिष्णुपद रे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके बाद युवाओं, खिलाड़ियों और विशिष्ट अतिथियों के साथ युवा संवाद आयोजित होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य खेलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, युवा सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को मजबूत करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR, AIEEAPG और AICE PhD 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है राष्ट्रीय खेल दिवस और टीबी मुक्त भारत। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म X, YouTube, Facebook और Instagram पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। खेल एवं युवा मामले विभाग की ओर से कल से 30 अगस्त तक राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 29 अगस्त को हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर देशव्यापी अभियान खेलेगा भारत जीतेगा भारत और फिट इंडिया पहल के तहत 3 प्रमुख स्तंभों श्रद्धांजलि, खेल और आगे बढ़े के आधार पर आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान कल मेजर ध्यानचंद को पुष्पांजलि दी जाएगी। इसके अलावा खेल चुनौतियां, एथलीटों व कोचों के साथ बातचीत भी की जाएगी। 29 अगस्त को 1 घंटा खेल के मैदान में विषय के साथ मुख्य समारोह आयोजित होगा। इसमें सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों और संगठनों द्वारा कम से कम 1 घंटे के लिए खेल और शारीरिक गतिविधियों के आयोजन होंगे। 30 अगस्त को साइकिलिंग, वॉकथॉन और रन एंड राइड और अन्य प्रतियोगिताएं खेली जाएंगी। शिक्षा विभाग के सहयोग से 3 जिलों के शैक्षणिक ब्लॉकों में स्कूली बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिताएं और 10 किलोमीटर की रोड रेस आयोजित होगी। ओपन प्रतियोगिताओं में

0: भाग लेने के इच्छुक नागरिक पंजीकरण के लिए खेल एवं युवा मामले विभाग से संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मुक्त भारत ऐप पर टीबी से संबंधित जानकारी और सेवाएं प्रदान की जा रही है। यह ऐप उपचार संबंधी मार्गदर्शन, दवा लेने के नियम और फॉलोअप सहायता प्रदान करता है। इस एप्लीकेशन के तहत निक्षय मित्र पहल के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को आसान बनाना है। इस ऐप में खुशी आपकी ई संगनी नाम से एक इंटरैक्टिव चैटबोर्ड भी शामिल है। मंत्रालय ने आम जनता से निक्षय मित्र के रूप में नामांकन कर जरूरतमंद टीबी रोगियों की मदद में योगदान देने के लिए टीबी मुक्त भारत ऐप डाउनलोड करने और इसका उपयोग करने का आग्रह किया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में शिप रिपेयर यूनिट में अनुबंध के आधार पर वरिष्ठ परियोजना अधिकारी और परियोजना अधिकारी के एक एक पद के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मानविकी विषय पर 31 अगस्त और विज्ञान विषय के लिए परामर्श 1 सितंबर को सुबह 9 बजे डाइट के सभागार में लिया जाएगा। उम्मीदवारों को सुबह 8:30 बजे तक अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ परामर्श में उपस्थित होने को कहा गया है। अंडमान कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि अध्यापकों और विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार आज आयोजित किया जाएगा। यह नियुक्ति लोक प्रशासन और भारत को समझना विषयों के लिए आवश्यकता के आधार पर की जाएगी। चयनित अतिथि अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुसार मानदेय दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र और अन्य आवश्यक विवरण अंडमान कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय हज समिति मुंबई ने हज 2027 के लिए द्वीप समूह से एक राज्य हज निरीक्षक का चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। इस पद के लिए केंद्र, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, स्वायत्त निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के स्थायी कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हज निरीक्षक पर होने वाले कुल व्यय का 50% हिस्सा भारतीय हज समिति वहन करेगा और शेष 50% यूटी हज समिति द्वारा वहन किया जाएगा। द्वीपों के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों ने सूरत के निकट धाम रोड स्थित एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज द्वारा आयोजित भ्रूण स्थानांतरण तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को मध्यचक्र हार्मोनल नियंत्रण, प्रजनन शरीर विज्ञान और भ्रूण स्थानांतरण तकनीक से जुड़ी प्रक्रियाओं पर जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। माई भारत की ओर से द्वीप समूह के 2 शैक्षणिक संस्थानों में खेलो इंडिया संवाद का आयोजन किया जाएगा। हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर कल से 30 अगस्त तक राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाएगा और मंत्रालय की ओर से लोगों से जरूरतमंद टीबी रोगियों की मदद के लिए टीबी मुक्त भारत ऐप डाउनलोड करने की अपील की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 7:15 हुई हैं। अब लीजिए सुनिए फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी।

0: नमस्कार श्रोताओं, देश रागनी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जहां डाल डाल पर हो खुशियों का बसेरा, हर आंगन में हो प्रेम का सवेरा, जिसकी मिट्टी की खुशबू से महके सारा जहां, वो भारत देश है मेरा।
1: डाल

दोस्तों, मिट्टी की खुशबू को दिल में लेकर हम इसका मान बढ़ाएं, मेहनत और प्रेम से इस पावन धरती को खुशहाल बनाएं।

दोस्तों, हमारा देश शांति, उन्नति और प्यार का चमन है। इसकी मिट्टी से ही बहती हम सब की पहचान है। इसके सम्मान के लिए हमारा तन, मन, धन सब न्योछावर है।

अभी आप देश रागनी कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम।

0: गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर पूनम त्रिपाठी के साथ ली गई ये भेंट वार्ता। विषय है पृथ्वी के महासागर।
1: पर्यावरण कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी इस खूबसूरत पृथ्वी का 70% से भी ज़्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम अब भी इस बड़े हिस्से के बारे में बहुत कम जानते हैं। जी हाँ, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे महासागरों के बारे में। इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में भूगोल विभाग की अतिथि प्रवक्ता डॉक्टर पूनम त्रिपाठी। डॉक्टर पूनम, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले जानना चाहेंगे महासागर किसे कहते हैं?
2: सागर भी हैं, महासागर भी हैं। तो महासागर जो है वो जो बहुत लार्ज वाटर बेसिन्स हैं हमारी पृथ्वी पर, एक दूसरे से कनेक्टेड जो वाटर बॉडीज हैं उन्हें महासागर कहते हैं। और जैसा आपने कहा कि ये पूरी सतह का 70.8% कवर करते हैं और इनमें हमारी पृथ्वी का 97% जल है। तो ये जो महासागर है, जल का मेन वाटर सोर्स यही है। हमने सबने सुना है सात महासागर है, सात समंदर कहेंगे, लेकिन सात नहीं है, पांच है। सबसे बड़ा है उसमें पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर जिसे कहते हैं, फिर है अटलांटिक, तीसरे नंबर पे है हिंद महासागर, उसके बाद आता है अंटार्कटिक ओशन या सदर्न ओशन भी कहते हैं उसे, और उसके बाद है आर्कटिक ओशन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ पोल के पास है। तो ये पांच है। और पैसिफिक कभी कभी उनकी जो क्वालिटीज उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए पैसिफिक ओशन को नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक में भी डिवाइड करते हैं, और अटलांटिक को भी नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक ओशन कहते हैं। तो इस वजह से कभी आप देखेंगे कहीं होगा सात महासागर, कभी पांच, वैसे है पांच।
1: सागर, खाड़ी, जलसंधि या एस्चुरी, ये क्या है?
2: पहले समझने, पृथ्वी पर जो मेन वाटर बॉडीज हैं वो महासागर हैं, और फिर महासागर और जमीन का जो हिस्सा है वो जहाँ ज्वाइन करता है वहाँ पर ये सारे ज्योग्राफिकल ये सब लैंडफॉर्म्स पड़ते हैं। तो सागर जो है वो भी खारा पानी ही है, लेकिन वो महासागर से छोटा होता है। उसका जो विथ है, जो एरिया है बेसिन का, वो महासागर से छोटा है, और जो सागर है वो लैंड से टच रहता है। जो महासागर है वो पानी आपस में एक दूसरे से मिल रहा है, कुछ कुछ जगह लैंड से टच है, लेकिन जो सागर है वो ज्यादातर लैंड एरिया से टच में रहते हैं, उनके मार्जिन्स पर रहते हैं। तो वो एक मार्जिन की तरह काम करते हैं, लैंड के भी मार्जिन में आ जाते हैं और ओशन के भी मार्जिन में आते हैं। दूसरा, सागर की जो डेप्थ होती है, बेसिन की डेप्थ वो कम होती है एज कम्पेयर टू महासागर, और इसकी डेप्थ कम है, और ये क्योंकि लैंड से जुड़ा होता है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत आते हैं, नदियां जो लेके आती है, नदियां अपना जो जल डालती है सागर में ही देती है, तो इसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा है, सन की डेप्थ पानी में थोड़ा ज्यादा जाती है, तो इसलिए इनमें जो है हमारी बायोडायवर्सिटी जो है सागर की वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ओशंस। और तीसरा है जो हम लोग इसका नमकीन जो होता है, सलिनिटी जो कहते हैं, तो क्योंकि सागर लैंड से घिरा हुआ होता है, जनरली इसमें सलिनिटी ज्यादा होती है, एवरेज से सागरों में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ओशंस। और खाड़ी उसे कहते हैं जब वो वाटर बॉडी जो है वो तीन तरफ से लैंड एरिया से घिरा हुआ होता है। जो सागर है वो दो साइड से भी घिरा हो सकता है, एक साइड से भी लैंड को टच कर सकते हैं, लेकिन जब वो वाटर बॉडी तीन तरफ से घिरी होती है लैंड से, उसे खाड़ी कहते हैं। और जब वाटर बॉडी और इनक्लोज्ड होती है उस लैंड एरिया में, तो उसको हम लोग बे भी कहते हैं। एक्चुअली गल्फ और बे हिंदी में एक ही शब्द है खाड़ी, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए दो शब्द होते हैं, एक है गल्फ और एक है बे। तो गल्फ होता है जो चौड़ा होता है, ज्यादा बड़ा होता है, तीन तरफ से लैंड होगा, और बे जो है वो छोटा होगा, वाटर बॉडी छोटा है, तीन तरफ से लैंड होते हैं उसके। तो जैसे हमारे गल्फ ऑफ मेक्सिको है, गल्फ ऑफ कैम्बे है, गल्फ ऑफ कच्छ है, और बे में हमें पता है हमारा बे ऑफ बंगाल है, सैन फ्रांसिस्को बे है। सो ये सब बेस जो है वो थोड़े छोटे होते हैं। और जल संधि, दो वाटर बॉडीज जो है, दो सी हो ओशन हो, वो दो के बीच में जो कनेक्टर पानी होता है, बीच में लैंड होगा, थोड़ा सा कनेक्टर जो होगा उसे हम लोग स्ट्रेट कहते हैं या जल संधि कहते हैं। तो ऐसे हमारे

0: पाक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, वो आपका मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है। हमारा पाक स्ट्रेट जो है, एक तरफ गल्फ ऑफ मन्नार है जो अरेबियन सी का हिस्सा है और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है, इसको कनेक्ट करता है। और कछार जिसे एस्चुरीज, तो एस्चुरीज जो है ये ऐसा है जहाँ पर खारा पानी और नदी का जो मीठा पानी है
1: जी
0: वो मिलते हैं, वहाँ पर ये एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। ना पानी पूरी तरह खारा है ना
1: मीठा
0: मीठा
1: है।
0: है, तो वहाँ पे टाइड का इन्फ्लुएंस बहुत होता है,
1: जी
0: जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बायोडायवर्सिटी बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ पे मीठे पानी वाले भी बायोडायवर्सिटी मिलती हैं, खारे पानी वाले भी मिलती हैं, और इन दोनों में जो सर्वाइव कर सके वो भी मिलते हैं। जैसे हमारे
1: जी
0: सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं, मेढक हैं, बहुत किस्म के होते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो ये समुद्र का एक्सटेंशन है ऑन टू द लैंड एरिया।
1: अब ये सब हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है?
0: पहली बात, जब ये हमारे पृथ्वी का 71% एरिया कवर कर रहे हैं, इनकी वजह से ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो पृथ्वी चल रही है, जो इस पृथ्वी पे हम रह पा रहे हैं, जो हमारी लाइफ है इस अर्थ की, वो इन महासागरों की वजह से ही है। अभी हमें पता है हमारी पृथ्वी जो है उसका एक बैलेंस है टेम्परेचर का, कि यहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर पाती है, बाकी प्लैनेट्स पे नहीं कर पा रही है, ये इन समुद्र की वजह से। ये पानी जो है ये हीट अब्जॉर्ब करते हैं, तो जब दिन का वक्त होता है तो इसमें हीट ये अब्जॉर्ब करते हैं और ये उसको रिटेन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पृथ्वी है वो रहने लायक है, इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। फिर ये सारे जितने हमारी जो साइकिलिंग चल रही है, जो पीने का पानी, हम जैसे बताया मैंने 97% पानी तो खारा पानी है महासागरों में, बाकी ये जो 3% है इसका जो ये चल रहा है वाटर साइकिल के थ्रू ही हो रहा है। तो पानी समुद्र से इवेपोरेट होता है, लैंड एरिया पे आता है, बारिश होती है, नदियों में आ जाता है, वही फिर हम यूज करते हैं। तो सागर नहीं होंगे तो ये भी नहीं होगा। उसी तरह से कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सब का ये सपोर्ट सिस्टम है। और अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का काम है ये भी इन महासागरों से ही हो रहा है। जैसे हमें पता है कि इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल एरिया में हीट ज्यादा है और पोलर एरियाज में कम है, तो सागरों में ओशन करेंट्स हैं, वो जैसे लैंड पे नदियां हैं वैसे इन महासागरों के भीतर नदियां हैं, इनको करेंट्स कहते हैं, तो ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्योंकि ये पूरा मेंटेन किया हुआ है इन्होंने ग्लोबल टेम्परेचर को, इस कारण से यहाँ लाइफ पॉसिबल है। दूसरा, इतने ऑक्सीजन है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे हम सांस लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आधा जो है 50% जो एटमॉस्फेयरिक ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई समुद्र से जाती है, क्योंकि समुद्र में महासागरों में जो ये प्लैंकटन्स हैं ये जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये ऑब्वियसली फूड चेन का मेन हिस्सा है, फिशेज पे डिपेंडेंट है हम लोग, उसके अलावा हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं इनसे, खाना तो मिलता ही है, फूड चेन है, फिर मिनरल्स मिलते हैं, तेल मिल रहा है, बालू और ग्रेवल इनसे हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल रही है, हमें ये एनर्जी देते हैं, टाइट से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है समुद्र। आज भी 80% जो ट्रेड है वो इन्हीं महासागरों के ऊपर से ही जाता है, जहाजों से ही जाता है, पैसेंजर्स फ्लाइट्स ले रहे हैं लेकिन सामान जो ट्रेडिंग है वो सारा सी से ही हो रहा है। एक लाइफ लाइन है, ये कनेक्ट करती हैं, और इसीलिए इनको एक टर्म दिया गया, सारे महासागरों को एक साथ इनका टर्म, इनको कहते हैं हम लोग वर्ल्ड ग्लोबल ओशन, क्योंकि पानी में कहीं बाउंड्री नहीं है, वो तो हम लोगों ने अपनी समझ के हिसाब से एक मैप के ऊपर लाइनें खींच दी है कि ये पैसिफिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, लेकिन वहां पे रहने से हमें डिफरेंस नहीं समझ आएगा।
1: तो जिस तरह से अभी आपने बताया ये मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है और तापमान को नियंत्रित करने में महासागरों की बहुत बड़ी भूमिका है।
0: बिल्कुल,
1: ये संसाधन अब खतरे में क्यों है?
0: सबसे बड़ा प्रदूषण है इसका कारण, और इतना ज्यादा हो गया है प्रदूषण समुद्र का कि उसे सफाई करने में उसके कम से कम 100-150 साल और लग जाएंगे, क्योंकि इनिशियली हमें लगा कि समुद्र बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, जो भी है अगर हम इसमें फेंक देंगे तो वो समुद्र ले लेगा, हम कहते भी है समुद्र ले लेगा, अपने अंदर संभाल लेगा, लेकिन उसका असर हमने सोचा नहीं था। और सबसे ज्यादा पोल्यूशन में भी जो प्लास्टिक का पोल्यूशन है वो बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा खतरनाक है इन जीवों के लिए जो समुद्र में है, और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, फूड वेब में प्लास्टिक आ जा रहा है, समुद्री जीव भी खतरे में है और हमारी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। दूसरा एक खतरा है ओवर फिशिंग का, जब से ट्रॉलर्स आए मछली पकड़ने के लिए, तो उसमें क्या होता है वो जो मछलियां जरूरी हैं वो तो पकड़ते ही, उसके साथ बहुत अन्य को भी पकड़ लेते हैं और बहुत ज्यादा कर लेते, तो जो एक बैलेंस होना है, क्योंकि

0: ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये अपने आप को बढ़ा लेगा, लेकिन अगर हम सभी को छटा देंगे एक बार तो बढ़ने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा स्टॉक। फिशिंग की वजह से समुद्र में और भी प्रॉब्लम है, जैसे ये जो फिशिंग नेट्स जब फट फूट जाते हैं ये लोग समुद्र में ही फेंक देते हैं, फिर उसमें सब जीव फंस जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो समुद्र के लिए अभी सबसे खतरा जिसका है वो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसका तो कोई तुलना ही नहीं है। वो हर लेवल पे समुद्र को, महासागरों को वो चेंज कर दे रहा है।
1: किस तरह से प्रभावित कर रहा है
0: ये? जैसे पहले है कि समुद्र गर्म हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन ये सब ज्यादा जा रही है एटमॉस्फेयर में, हीट अब्सॉर्प्शन बढ़ रहा है तो पानी ही अब्सॉर्ब कर रहा है उसे। अब ये गर्म हो जाता है तो जब पानी गर्म हो जाता है इसमें जो गैसेस हैं वो घुलने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। एक सिंपल एग्जांपल, चीनी घोलते हैं पानी में, गर्म कर देंगे तो तुरंत गल जाएगी। तो समुद्र भी जैसे गर्म हो रहा है उसकी वजह से जो गैसेज है वो ज्यादा अब्सॉर्ब हो रही है, उसकी वजह से समुद्र और एसिड होता जा रहा है। अब जब समुद्र एसिडिक हो रहा है तो फिर जो जीव जंतु है उनके लिए मुश्किल हो रही है सर्वाइव करना। एक और हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो वो पानी भी इसमें आ रहा है, तो पहले पानी की क्वांटिटी भी बढ़ रही है, वो पानी और गर्म भी हो रहा है और वो और एसिड होता जा रहा है। सो तीनों चीज एक साथ कंबाइन करके क्लाइमेट चेंज ने इस इकोसिस्टम को, हमारे जो पृथ्वी का जो बायोस्फीयर हम लोग कहते हैं जो इकोसिस्टम है, उसका संतुलन बिगाड़ ही दिया है। अभी वो जो बिगड़ने का जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो गई है। पहले था कंट्रोल कर लेंगे कार्बन एमिशन तो we could recover, but now it has crossed that point and with time हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या होगा।
1: अब इसे कैसे हम बचा सकते हैं या आम नागरिक महासागर संरक्षण में कैसे सहयोग कर सकता है?
0: सबसे पहले जो चीजें क्लाइमेट चेंज में जो रहती हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें अपने लेवल पे, कार्बन एमिशंस कम करें, और वो तभी कम होगा अगर हम लोग अपने ये कंज्यूमरिस्टिक माइंड से निकलेंगे, जो जरूरत है उसी पे फोकस करेंगे उसके वजह से होगा। दूसरा, प्लास्टिक अपनी तरफ से जितना कम हो उतना प्लास्टिक का यूज कम करें, क्योंकि प्लास्टिक एक बहुत बड़ा खतरा है सबके लिए, लैंड में डालने से भी, वहां भी हर तरफ से खतरा ही क्रिएट कर रहा है प्लास्टिक। और कचरा हर दिन जनरेट होता है, हर घर में जनरेट होता है, उस कचरे को सही तरीके से डिस्पोज करें। हमें लगता है कि मेरे एक इंसान के एक बॉटल को समुद्र में डालने से क्या हो रहा है, लेकिन अगर सब ऐसे करने लगे तो इस अर्थ पे 8 बिलियन से ज्यादा लोग हैं तो कितना हो जाएगा। तो इसे हमें समझना है, हमें रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है, और कुछ है लोकल क्लीन अप ड्राइव्स जो होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जागरूक कर सकते हैं सबको। आपको पता है जो नहीं फॉलो कर रहे हैं आप उन्हें बताइए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए ही हानिकारक है। मे बी हमें तुरंत उसका लिंक नहीं दिख रहा है लेकिन आने वाले साल में दिखेगा ही, इसको अपने लेवल पे इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर पूनम, आज आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने महासागरों के बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताया, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत पृथ्वी के महासागर इस विषय पर डॉक्टर पूनम त्रिपाठी के साथ ली गई ये पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता सुन रहे थे, और इनके साथ भेंट कर रही थी जय शीला।
3: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

0: तो देर किस बात की। अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: श्रोताओं, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में कयामत फिल्म का ये गीत। समीर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।
1: आपका जूता देखा, बहुत हसीन है। इसे अपने पैरों में मत डालिएगा, मैला हो जाएगा। प्यार में लोग एक दूसरे को बतौर निशानी फूल, कार्ड, अंगूठी, रुमाल देते हैं। ये पढ़ा और सुना था, पर ये जूता, लगता है प्यार में आपके यहाँ जूता देने का रिवाज है, दिल चुराने का अच्छा अंदाज है।

अब सुनिए उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल का गाया जूली फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं समीर तथा संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के गाए जूली फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमरीका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेन्दे नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल

0: और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 977-98-51-31-6807 और 977-979-10-7500। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेइचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 00-86-18-51-42-84-905। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 1,50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।
3: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
4: यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है।

0: मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
2: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या बंदारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद प्रियंका। नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी, टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, दो नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की भारत यात्रा से पहले विशेष प्रतिनिधियों के बीच दो हॉटलाइन पर बनी सहमति, 8 बिंदुओं से सुलझाएंगे सीमा विवाद। दहेज मामलों में अब तारीख पर तारीख नहीं। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की मीठी चहचहाट, इंसानों को अब पूरा नहीं मिल पा रहा तनाव मिटाने वाला नेचुरल टॉनिक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमरीका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर।

अभी आप नकी काजमी का लिखा कलाम सुन रहे थे, जिसे आवाज़ दी थी वत्सला मेहरा ने। अब इन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं ज़फ़र की लिखी ये गज़ल।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में नवाब आरजू का लिखा ये कलाम।

अभियां सुगम संगीत के कार्यक्रम में वत्सला मेहरा और अनुराधा पौडवाल को सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने।

0: कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना मेरे सनम फिल्म से। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। मजरू के लिखे गीत को संगीत से संवारा था ओपी नैयर ने। अब सुनिए आनंद बख्शी की लिखी ये गीत रचना, जिसकी तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। आवाज़ है किशोर कुमार की तथा फिल्म का नाम है मर्यादा।
1: गुस्सा।

0: अभी आप मोहम्मद रफ़ी का गाया संगम फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे हसरत जयपुरी तथा संगीतकार थे शंकर जयकिशन। श्रोताओं, तराने सुहाने कार्यक्रम में कुछ और गाने आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

0: HIV/AIDS से जुड़े सभी सवालों के लिए आज ही टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो, जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू दी एल्डरली पॉपुलेशन, कि एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एंजॉयमेंट पर्पस नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा इतना

0: ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है। यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं। बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है। तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूँगा कि आप आएँ, इस पे कंटेंट बनाएं, और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कंटेंट बनाएं, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं। और इससे कैश प्राइजेस भी हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी, और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा, और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इटसेल्फ एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय, और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया। श्रोताओं, तराने सुहाने कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। कार्यक्रम में अब सुनिए कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में तैयार कसौटी फिल्म का ये गीत। आवाज़ है किशोर कुमार की और इस गीत को लिखा है वर्मा मलिक ने।

अभी आप मोहम्मद रफ़ी के स्वर में ससुराल फिल्म का गीत सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के लिखे शब्दों को संगीत में ढाला था शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम के आखिर में पेश है किशोर कुमार का गाया सगीना फिल्म का ये गीत। एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार इस गीत को लिखा है मजरू ने।

0: बाप की रे, बाप की रे, सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे, बाप की रे, बाप की रे, सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे, कौआ जैसे पंख मयूर का अपनी दुम में बांधे, अपनी दुम में बांधे,
1: अपनी दुम में बांधे। अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा, क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा, लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा, क्या समझे तुम नीचा, मेरा वो सब जाहिल बन गया, इस साला में तो साहब बन गया।
2: Attention!

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9:30 हुए हैं।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी?
3: हाँ।
2: नहीं झुमके?
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर एम बाला मुरली कृष्णा का कर्नाटक शैली में गायन। इनके साथ वॉयलिन पर है मीरा नारायण, मृदंगम पर है एस राजा राव और घतम पर है टी एच सुभाष चंद्रन। अब प्रस्तुत है राग सरोजा डाला नेत्री, जो आदि ताल में निबद्ध है।

श्रोताओं, अब प्रस्तुत है राग रामा नीनु वीणा, जो रूपक ताल में निबद्ध है। कृति त्यागराजा की है।

0: श्रोताओं, अभी आप डॉक्टर एम बाला मुरली कृष्णा का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 10 बजे हैं।
1: Some cars are designed to blend in. Others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design. Already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now. Nexa.
0: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है SMS पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम SMS My Choice। इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मनपसंद गीतों को सुनने के लिए अपना नाम, पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल लिखकर हमें SMS भेज सकते हैं इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474-234-000। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज का अर्जुन फिल्म के इस गीत से। इस गीत को सुनने के लिए हमें SMS भेजा है डॉलीगंज श्री विजयपुरम से आहद खान ने।

अब सुनते हैं अगला गीत टू स्टेट्स फिल्म से। इस गीत की फरमाइश की है उसामा ने, जो स्कूल लाइन श्री विजयपुरम से हैं।

पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से, शिवा गोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली, हमारे ये सभी दोस्त सुनना चाहते हैं जीते हैं शान से फिल्म का गीत। तो आइए सुनते हैं ये गाना।

0: दिया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली, जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली।

0: हमको लेले नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

अब आपको सुनवाते हैं एक फूल दो माली फिल्म का गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें SMS भेजा है इंदौर मध्य प्रदेश से रेवाराम कोठारी ने। आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये गाना।

जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल, हमारे इन सभी दोस्तों ने फरमाइश की है प्रेम बंधन फिल्म के इस गीत के लिए। लीजिए सुनिए इनके पसंद का ये गाना।

अब सुनते हैं अगला गीत, कोरा कागज़ फिल्म से। इस गीत की फरमाइश की है पद्मा टॉकीज़, नेपा नगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने।

अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म सरगम से। इस गीत की फरमाइश की है मजनू का टिल्ला से, कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और सतना मध्य प्रदेश से, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने।

दादा बाबू रोड, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहद, मिफ्रा नाज़ और बेबी चाहत, हमारे सभी दोस्त सुनना चाहते हैं वारिस फिल्म का ये गाना। आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये गीत।

अब आपको सुनवाते हैं फिल्म हीरा पन्ना का गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें SMS भेजा है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना गोंडा ने, प्रणय कुमारी प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडा ने और हीरामन शेंडे ने। आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये गीत।

अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत पराया धन फिल्म से। इस गीत की फरमाइश की है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा और पूजा परिहर ने।

श्रोताओं, आप सुनते हैं फिल्म काजल का गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें SMS भेजा है देतरंगी भेटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा ने।

0: श्रोताओं, अभी आप SMS पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम SMS माई चॉइस सुन रहे थे। श्रोताओं, एक सूचना।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के

0: बारे में जानकारी के साथ ये है दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
1: जेम्स ऑफ इंडिया का पायलट फेज हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स, एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड हमारी आर्ट कल्चर, हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड मैं आपके माध्यम से जेन जी जो है हमारे, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी, उनको अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट कल्चर, इन सब को जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा। सो आपके माध्यम से मैं सारे जेंजी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स ऑफ 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज मनी एंड आई अर्ज एवरीबडी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन दिस।
0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थी दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
2: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1359वीं कड़ी।

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं श्रोताओं आज का सुविचार। इसे भेजने वाले हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी। लिखते हैं,
2: सत्य की राह भले कठिन हो लेकिन मंजिल हमेशा उजाले तक पहुंचाती है। झूठ कुछ पल चमक सकता है पर सत्य सदा सम्मान और विश्वास दिलाता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके द्वारा भेजे गए संदेश। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत और गुरकीरत राहुल के साथ गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: तहसील ठियोग जिला शिमला से सूरज चौहान जी
0: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने लिखा है, आज उमंग कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जीवन, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति से जुड़ी अत्यंत रोचक, प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने का अवसर मिला।
2: ये भी जानिए, मैं ये जानकर गर्व हुआ कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे ओजस्वी पुकार और जय हिंद जैसे अमर राष्ट्रनाद को जन जन तक पहुंचाने में नेताजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
0: उनका अदम्य साहस, अटूट देश प्रेम और बलिदान आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए अजीत जी और विमलेश जी और कार्यक्रम की पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। लिखा है, आपकी संपूर्ण टीम को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने वाले कार्यक्रम के निर्माण हेतु हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश सेवा सर्वोपरि के सिद्धांत को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से श्रेष्ठ साबित करने वाला प्रेरक प्रसंग सुनकर मन गदगद होकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। आपको हार्दिक आभार और धन्यवाद।
2: आपको भी हार्दिक आभार संदेश भेजने के लिए। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं इस बार भी करेंगे कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं इस

0: सप्ताह पिछले 2 दिनों में हमने बात की भारत के 2 अनोखे गांवों की। आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं एक और रोचक गांव की जानकारी। तो विमलेश जी, आज अपनी ज्ञान यात्रा में हम कहाँ चल रहे हैं?
1: अजीत जी, चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य की ओर और चलते हैं एक गांव में जहां मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो।
0: क्या बात है, जहां मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो। अच्छा, ऐसा भी कोई गांव है? कोई मजाक कर रहे हैं आप?
1: नहीं नहीं अजीत जी, बिल्कुल सच। ये वो जगह है जहाँ के छाते भी कहते हैं वर्षा रानी कभी तो रुको।
0: क्या बात है, वर्षा रानी कभी तो रुको।
1: जी चलिए, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछती हूँ, बताइए ये कौन सी जगह है?
0: अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर की वर्षा भी रुकना भूल जाती है तो मुझे याद आ गया, वो जगह है मौसिनराम, ये मेघालय राज्य में है।
1: बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, तो जरा श्रोताओं को ये तो बता दें कि कितनी बारिश होती है वहाँ।
0: विमलेश जी, यदि यूं ही बता दूं ना कि वहाँ की औसत सालाना बारिश कितनी होती है तो जानकारी में वो मजा नहीं आएगा।
1: जी
0: तो पहले मैं बताता हूँ कि भारत के कुछ और शहरों में बारिश कितनी होती है।
1: जी।
0: जैसे दिल्ली की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 650 मिलीलीटर,
1: चेन्नई की लगभग 1400 मिलीमीटर और मुंबई की लगभग 2200 मिलीमीटर,
0: और यदि कोलकाता की बात करें तो ये लगभग 1600 मिलीमीटर है। तो अब सुनिए कि मौसिनराम मेघालय की औसत सालाना वर्षा कितनी है।
1: जी,
0: तो यहाँ की सालाना औसत वर्षा है 11,900 से लेकर 12,000 मिलीमीटर तक।
1: जी,
0: यानी यदि इसे मीटर में मापें तो औसत सालाना बारिश लगभग 12 मीटर के आसपास है।
1: 12 मीटर, यानी अगर इतना बारिश का पानी जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा।
0: जी जी, तो विमलेश जी, अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि चेन्नई, मुंबई और अन्य शहरों की अपेक्षा यहाँ बारिश कितनी होती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि यहाँ पर 1200 मिलीमीटर की बात हम कर रहे हैं। तो आपने ठीक कहा, 12 मीटर यानी इतना पानी यदि जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा। हालांकि इतना पानी वहाँ जमीन पर लगातार जमा नहीं रहता, लेकिन जरा सोचिए विमलेश जी, आसमान से हर साल करीब 12 मीटर आग जलाकर गर्म रखा जाता है, भीगे कपड़े उन्हीं गर्म पेटियों में सूखते रहते हैं
1: और अनाज का भंडारण वे धान के पुरालों या पुआलों में रखकर करते होंगे, ये उनके पारंपरिक तरीके हैं।
0: जी
1: तो जी जी, अब बात करते हैं उनके घरों की। घरों को भी भारी बारिश को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। उस इलाके में बहुत से ऐसे घर मिल जाएंगे जो बांस के खम्भों पर टिके हुए हैं। वहाँ रास्तों पर पानी, फिसलन और कभी कभी भूस्खलन भी बहुत बड़ी चुनौती है। बता दें कि खासी जनजाति का मुख्य भोजन चावल है और जादोह यहाँ का पारंपरिक व्यंजन है।
0: इंग्लिश जी, मन में एक सवाल और आता है कि वहाँ बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे?
1: अजीत जी, ऐसा नहीं है कि वहाँ बारिश के कारण स्कूल बंद रहते हैं। भूस्खलन और तेज तूफानों के समय विशेष सावधानी बरती जाती है, लेकिन वहाँ बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं। दिल्ली और NCER शहरों में स्कूल जाते समय बच्चे सोचते हैं आज बारिश होगी तो क्या होगा, जबकि
0: मौसिनराम में बच्चे सोचते होंगे आज कितनी बारिश होगी। विमलेश, इतनी बारिश के बाद वहाँ की प्रकृति कैसी होगी?
1: अद्भुत, चारों तरफ हरियाली, पहाड़, झरने, धुंध और गुफाएं, मानो प्रकृति ने खुद को हरे रंग में रंग दिया हो। एक बात और, वहाँ लगातार होने वाली बारिश के कारण सामान्य पुल बहुत अधिक नहीं टिकते, इसलिए उस क्षेत्र और मेघालय राज्य में पेड़ों की जड़ों से भी पुल बनाए जाते हैं।
0: जी हाँ, इन्हें लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। यहाँ पेड़ों की जीवित जड़ों को वर्षों तक दिशा देकर मजबूत पुल का रूप दिया जाता है। ये पुल कभी नहीं टूटते।
1: जी,
0: यानी विमलेश जी, सब कुछ सुनकर ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग प्रकृति को हराने की कोशिश नहीं करते।
1: जी बिल्कुल सही कहा अजीत जी, वे प्रकृति के साथ जीना सीखते हैं। तो अजीत जी, मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स का ये गांव मौसिनराम हमें क्या सिखाता है?
0: विमलेश जी, ये गांव हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मनुष्य उनके साथ तालमेल बनाकर जीवन को सुंदर बना सकता है।
1: जी अजीत जी, मेरे मन में एक खूबसूरत वाक्य आ रहा है।
0: भला वो क्या?
1: बारिश कितनी भी हो, जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
0: वाह क्या बात है, बारिश कितनी भी हो,
1: जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
0: जी जी, ये बात है। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी भारत के एक और गांव मौसिनराम के बारे में। ये गांव तो है ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, हमारा प्रश्न है, मौसिनराम और मेघालय खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मौसिनराम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको NCERT की पाठ्य पुस्तक

0: पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
1: जी, पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप करें,
0: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो YouTube पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएंगे।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सबसे पहला हमारा आज का कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में विस्तार से बताया गया है और विशेषकर इसके बनने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है।
1: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी, नाना जी।
4: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ। कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी। आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
5: बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
6: नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
3: हाँ हाँ, बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
4: बेटा, मैं भूगोल पढ़ाता था।
5: ये लो, नानी जी भी आ गई।
7: अरे, यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
4: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
7: हाँ, वो तो है।
3: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
7: अच्छा, तो ये बात है। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
4: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
3: कहाँ से आया है
4: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
3: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
4: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
5: पूरी दुनिया में नहीं होता, तो फिर?
4: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
3: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
4: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
3: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
4: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है। वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
3: अच्छा नाना जी।
4: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
3: अच्छा।
4: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
3: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
4: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून

0: यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं। कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
1: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
0: हाँ।
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
0: बिल्कुल।
1: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
2: अच्छा।
1: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
2: अच्छी अर्थव्यवस्था।
1: हाँ।
0: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है, वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है। अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
0: भाई, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए?
2: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया।
5: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण जनजातीय कार्यकर्त्री तुलसी गौड़ा के जीवन और पर्यावरण संरक्षण में उनकी अहम भूमिका के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
6: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहने
7: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती।
8: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा।
6: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
9: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है।
0: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
10: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
0: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
11: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: रेतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों मैं करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे

0: ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। तुलसी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
1: हाँ बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ देश बचाओ।
2: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
1: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
2: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
3: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
2: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
1: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
1: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ,

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जवाब से। कन्नन देवी की आवाज़ में गीत रचना बेकल की और संगीत दिया है कमल दास गुप्ता ने।

कार्यक्रम का अगला गीत लिया गया है फिल्म दो बहनें से। प्रदीप की आवाज़ में गीत रचना ब्रिज काला मंदिर की, संगीत दिया है वसंत देसाई ने।

गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में सुनिए फिल्म सीआईडी का गीत। गीत रचना मजरू की और संगीत से सजाया है सलील चौधरी ने।

शैलेंद्र का लिखा व शंकर जयकिशन की संगीतबद्ध। श्रोताओं सुनिए सीमा फिल्म का गीत, जिसे गाया है मन्ना डे और साथियों ने।

मिर्ज़ा गालिब का लिखा व गुलाम मोहम्मद की संगीतबद्ध। श्रोताओं सुनिए मिर्ज़ा गालिब फिल्म का गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

भाई भाई, श्रोताओं सुनिए इस फिल्म का गीत। गीता रॉय की आवाज़ में राजेंद्र किशन के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

0: श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत सुन रहे थे। श्रोताओं, एक सूचना।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये है दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
2: जेम्स ऑफ इंडिया का पायलट फेज हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में, एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स, एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड हमारी आर्ट, कल्चर, हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पर आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड मैं आपके माध्यम से जेन जी जो है हमारे, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी, उनको अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट, कल्चर, इन सब को जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा। सो आपके माध्यम से मैं सारे जेंजी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स ऑफ 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज मनी एंड आई अर्ज एवरीबडी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन दिस।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

0: മലയാളം പ്രക്ഷേപണം വീണ്ടും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30. നമസ്കാരം.
1: श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे. ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है. दोपहर के 1 बजने वाले हैं. कुछ ही क्षणों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे. कृपया प्रतीक्षा कीजिए.

प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में आयोजित किया जाएगा। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत हुई, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट, भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। कर्नाटक सरकार ने विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों पर विचार करने और शिक्षा सुधारों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया है। अमरीका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर हैं। वे गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की है। मुंबई का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह विश्व का सबसे तेजी से विकसित होने वाला कंटेनर बंदरगाह बनकर उभरा है। इस बंदरगाह ने इस वर्ष की पहली छमाही में कंटेनर परिवहन में 13.6% की वृद्धि दर्ज की है। और अंत में कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच जारी है। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। श्री मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम खेलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ा रहा है तथा सभी खिलाड़ियों को समान अवसर देने में मदद करेगा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेल और प्रस्तावित 2036 ओलंपिक खेलों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री शाह एक दिन के गुजरात दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमरेली जिले में दुधाला के पंचगंगा तीर्थ में नवनिर्मित हेतनी हवेली झील का उद्घाटन करेंगे। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया है कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की है और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद है और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। नेपाल में बाढ़ के बाद किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बिहार में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 9 टीम और उत्तर

0: प्रदेश में एक टीम तैनात की गई है। नई दिल्ली में आज बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने संवाददाताओं को बताया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास कुशीनगर क्षेत्र में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी तक बाढ़ का व्यापक असर नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और इस्पात विनिर्माण में भारत जापान साझेदारी बढ़ाने के लिए निवेशकों से चर्चा की। ओसाका में आरओएचएम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कात्सुमी अजुमा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने बैठक की। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 127 रन की बढ़त बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 164 अंक गिरकर 77,309 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. Addressing the Khelo India dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said, from sports universities to modern training centres, an ecosystem is being developed across the country where talent receives support at every stage. He said that sports is not limited merely to winning medals.
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: Speaking on the occasion, Union Minister for Youth Affairs and Sports Mansukh Mandavia said, under the leadership of Prime Minister Modi, sports has emerged as a national priority and an important instrument of youth empowerment. The Khelo India dialogue provided a direct channel for young people to engage with the country's sporting ambitions while ensuring that their ideas and perspectives become part of the continuing conversation on India's youth and sports ecosystem. The death toll from the flash flood that swept through parts of the Nepal-Tibet border has reached 162. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal has said nearly 300 Indians are among thousands reported missing in the floods. Originating in Tibet, the flood devastated several towns and villages, washing away critical bridges and crippling a dozen hydropower projects. India has dispatched the second tranche of 37.5 tons of humanitarian assistance and disaster relief material, medicines and food packets for Nepal. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar informed that the second flight has taken off carrying relief materials. India had dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines yesterday. Earlier, Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart, Balendra Shah, and assured him of all possible humanitarian assistance. The National Disaster Response Force, NDRF, today said the devastating flash floods in Nepal have so far had no adverse impact on the border areas of Bihar and Uttar Pradesh. However, the situation is being continuously monitored in coordination with the two state governments. NDRF Inspector General Narendra Singh Bundela said 20 NDRF teams have been deployed in the two states, including 9 in Bihar and 11 in Uttar Pradesh. The teams are prepared to undertake evacuation, relief and rescue operations in case of flooding or waterlogging. He said the first barrage on the Gandak River along the Indian-Nepal border at Valmiki Nagar in

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्स आपके नाम फिल्मी पैगाम। इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मनपसंद गीतों को सुनने के लिए अपना नाम, पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल लिखकर हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474-234-000। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म किक के इस गीत से। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ ने।

0: अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से। इस गीत की फरमाइश की है असम से हितेंद्र दास ने।
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ।

पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली, हमारे ये सभी दोस्त सुनना चाहते हैं औजार फिल्म का गाना। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

अब आपको सुनवाते हैं फिल्म प्रेम रोग का गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियम थांडी, बेबी वामिका और वानी थांडी ने। आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये गाना।

पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल नीति, सुरभि अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, हमारे इन सभी दोस्तों ने फरमाइश की है कटी पतंग फिल्म के इस गीत के लिए। लीजिए सुनिए इनके पसंद का ये गाना।

श्रोताओं, अभी आप व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. Addresses Khelo India dialogue through video conferencing. 300 Indians among thousands missing in massive flash flood in Nepal, over 160 dead. India sends second tranche of relief materials. NDRF teams deployed in Bihar and Uttar Pradesh to respond to any flood-like situation. Forecast of heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. US President Donald Trump says no fixed timeline for Iran to return to negotiating table. And in men's cricket, Sri Lanka extend their lead over India to 147 runs in second innings of the second and final test at Colombo. Prime Minister Narendra Modi has said the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. He said from sports universities to modern training centres, an ecosystem is being developed across the country where talent receives support at every stage. Addressing the Khelo India dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said, sports is not limited merely to winning medals. Rather, it is a mission to unite India's sporting prowess and youth power in the building of a developed India.
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है. ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है. मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले. और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है. खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना.
0: He said every district has the potential to shine on the global sports map. The Prime Minister said he had announced from the ramparts of the Red Fort a big talent hunt to identify kids from 5 to 15 years of age in sports.
1: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है. और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है. हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी.
0: The Prime Minister expressed happiness that today's sports has emerged as an excellent career and profession in India. Mr. Modi said sports does not just teach to become champions, but also to become better competitors. He said the Khelo India Samvad is not merely a program for discussing sports, but it is a platform for dialogue where every single idea can give a new direction to the nation's sports vision.
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले.
0: स्पीकिंग

0: 21st century addresses Khelo India dialogue through video conferencing. 300 Indians among thousands missing in massive flash flood in Nepal, over 160 dead. India sends second tranche of relief materials. NDRF teams deployed in Bihar and Uttar Pradesh to respond to any flood-like situation. Forecast of heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. US President Donald Trump says no fixed timeline for Iran to return to negotiating table. And in men's cricket, Sri Lanka extend their lead over India to 151 runs in second innings of the second and final test at Colombo. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत की कोई निश्चित समय सीमा नहीं। और कोलंबो में दूसरे तथा अंतिम टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 151 रन की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
2: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
2: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है, और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है।
3: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और

0: फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
1: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया था। देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के दो दो कॉलेजों के युवाओं ने इसमें भाग लिया। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गुजरात में गांधीनगर के पालज स्थित IIT में आयोजित खेलो इंडिया संवाद से अलग मीडिया से बातचीत में डॉ. मांडविया ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल खेल अकादमियों की स्थापना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली के हिंदू कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
2: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से दो मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स। ये तो बहुत फख्र की बात है।
1: कश्मीर के सभी 10 जिलों के हजारों छात्रों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल माध्यम से आयोजित खेलो इंडिया संवाद में भाग लिया। प्रतिभागियों ने युवा पीढ़ी को खेल अपनाने और खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। चंडीगढ़ के 51 शिक्षण संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों और राष्ट्रीय खेल सेवा स्वयं सेवकों ने आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पठानकोट स्थित आर्य महिला महाविद्यालय की छात्रा शिव्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश हमेशा युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के सर्किट हाउस एनेक्सी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृहमंत्री गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी का कारण भूकंप के झटकों से ग्लेशियर फट जाने को माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है +9779851316807 और +9779701075000। विश्व बैंक ने भी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं। डॉ. जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव

0: और काठमांडू और पेचिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटन संचालकों और परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत सहायता प्रदान करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई है, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बल की एक टीम तैनात की गई है।
1: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो CWC का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
0: इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी न करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि डीए अभी तक जारी नहीं होने के कारण 3 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। उन्होंने ईरान की आर्थिक मुश्किलों का भी उल्लेख किया। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी आज ईरान पहुंचेंगे। वे ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। श्रीलंका ने चायकाल तक दूसरी पारी में 155 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को उनकी पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट करके फॉलो ऑन दिया है। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 143 अंक गिरकर 77,000

330, जबकि निफ्टी 36 अंक की गिरावट के साथ 24,171 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1,000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और कोलंबो में दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 155 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अतः मछुआरों को 30 अगस्त तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:32 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

100.9 आपका हम सफर।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: नॉन स्टॉप म्यूजिक।

0: What the hell are you doing?
1: बहुत प्यार आ रहा है तुम पर।
0: But लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे?
1: Who cares? जो देख रहे हैं उन्हें देखने दो और जो जल रहे हैं उन्हें जलने दो।
0: Okay.

0: श्रोताओं, हम जल्दी जुड़ेंगे कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक में इस अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय दोपहर बाद के 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, कुछ रिश्ते शोर नहीं करते, वो खामोशी में भी मुस्कुराते हैं। जब दिल किसी को अपना लिख दे तो हर धड़कन एक नज़्म बन जाती है।

कुछ हवाएं भी पैगाम लेकर आती हैं, दिल की अनकही बातें सुना जाती हैं। जो सफ़र किसी अपने के साथ हो वो मंजिल से भी ज़्यादा खास हो जाती है।

कुछ मुलाकातें का कोई कारण नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, फिर भी दिल उन्हें अपना मान लेता है। शायद इसी एहसास को राब्ता कहते हैं।

प्यार में नोक झोंक भी ज़रूरी होती है, थोड़ी शरारत भी अधूरी होती है। हंसी के साथ जो दिल मिल जाए वही कहानी सबसे प्यारी होती है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 4 बजे हैं। आज की दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनलामन इंगी रोकर हमांग इंगी तका लमक तेलंगी मीडियम वेव 438.6 मीटर 684 किलोहर्ट्ज रमांग एलंगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अन्ये निकोबारी प्रोग्राम तहांग।
2: इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू प्रसार भारती प्राउडली प्रेजेंट्स जेम्स ऑफ इंडिया, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their district.

0: Tigaknya, Gohard Rock antahe ngamana haanghi, tercung harawanaya pro nagat rehtin keke. Hoi hang ngatil nga haangin nga sinta nga muhik in hurit ay hang rongi takasata, italuan ay hang mirit nakauksin ganyro talasa kama ngayin.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 4:30 हुए हैं। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 19वीं कड़ी।

Hello, dear friends. Welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. बहुत से लोग शराब को जिंदगी की टेंशन और बोरियत दूर करने के लिए एक जरिया मान लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब शराब ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन बन जाती है। आजकल के बच्चे तो शराब कुछ अर्ली एज में ही शुरू कर रहे हैं। जो व्यक्ति जितनी कम उम्र में शराब पीना शुरू करता है, उसके एडिक्ट होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। विज्ञापनों के माध्यम से जब कोई व्यक्ति अपने फेवरेट हीरो आदि को शराब

का आकर्षक रूप में विज्ञापन करते हुए देखता है तो वह नशे के प्रति आसानी से आकर्षित हो जाता है। शराब कंपनियां अगर डायरेक्टली इसका एड नहीं कर पाते हैं तो वे म्यूजिक, सोडा, ग्लासेस या अन्य कुछ और चीजों के माध्यम से करते हैं। दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट मार्केटिंग, और वो अल्कोहल कंजम्पशन के लिए लुभाती है। डियर फ्रेंड्स, वी ऑल नो अत्यधिक शराब पीने के नुकसान, वी ऑल नो द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल एडिक्शन। कुछ लोग शराब पीने के पक्ष में यह तर्क देते हैं कि दो पैग पीने के लिए तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं, लेकिन दोस्तों कितने लोग हैं जो काफी समय बाद भी दो पैग पीने पर ही सीमित रहते हैं। हकीकत यह है कि कब दो पैग चार पैग में, चार पैग क्वार्टर में और क्वार्टर बोतल में परिवर्तित हो जाता है पता ही नहीं चलता है, और शराब के अत्यधिक एवं अनियंत्रित रूप में सेवन करने से उनके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक नुकसान होने शुरू हो जाते हैं।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। शराब के अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से एसिडिटी, पेट में अल्सर, लिवर में सूजन यानी हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज तथा हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है और हड्डियां कमजोर हो जाती है। इससे मुंह, अन्न नालिका, पेट व पैंक्रियास के कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है। शराब का अनियंत्रित सेवन पारिवारिक महिलाओं को खराब करता है। पति पत्नी में झगड़े बढ़ जाते हैं। शराब के नशे में व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करता है और पड़ोसियों के साथ संबंध खराब कर लेता है। शराबी व्यक्ति के कार्यालय पर परेशानियां होना शुरू हो जाती है। पुराने दोस्त छूटकर नए शराबी दोस्त बन जाते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाना अनेक गंभीर दुर्घटनाओं को अंजाम देता है। व्यक्ति खुद की और दूसरों की जिंदगी के लिए खतरा बन जाता है। कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। समाज में मान सम्मान घट जाता है। लोग कटने लग जाते हैं। अल्कोहल एडिक्ट व्यक्ति के बच्चों के शादी विवाह में परेशानियां आती है। पुलिस द्वारा शराब के नशे में कानून तोड़ने के जुर्म में अरेस्ट करने की घटनाएं बढ़ जाती है। शराब के नशे में चोरी करना, झूठ बोलना तथा अन्य आपराधिक कृत्यों को बढ़ावा मिलता है। व्यक्ति अपने काम धंधे से विमुख हो जाता है। उसकी सुबह शराब के साथ शुरुआत होती है और रात भी शराब के नशे में डूबे हुए ही बीतती है। अपने काम धंधे पर ध्यान न दे सकता है। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति खराब होना शुरू होती है और आखिर में स्थिति यह आ जाती है कि व्यक्ति सब कुछ बेचकर भी शराब की बोतल खरीदने को तैयार होता है। डियर फ्रेंड्स, इफ यू रिमेम्बर, महात्मा गांधी जी ने शराब के संबंध में कितना सुंदर कथन कहा है। शराब की लत शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आर्थिक रूप से मनुष्य को बर्बाद कर देती है एवं शराब के नशे में मनुष्य दुराचारी बन जाता है। अगर आपको पता करना है कि क्या है ये सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल एडिक्शन तो सुनिए। अक्सर शराब पीने वाले व्यक्ति ये स्वीकार नहीं करता है कि शराब उसके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, बल्कि वह अपनी जिंदगी में होने वाली परेशानियों की वजह अन्य व्यक्तियों या परिस्थितियों को ही बताता है। उतने ही नशे के लिए अधिक शराब की आवश्यकता होना। व्यक्ति को अब शराब की उतनी मात्रा से नशा नहीं होता जितनी मात्रा में पहले हो जाता था। अब उसे नशा प्राप्त करने के लिए शराब की ज्यादा मात्रा लेनी पड़ती है। इस तरह शराब की मात्रा धीरे धीरे बढ़ जाता है। शराब अचानक छोड़ने पर गंभीर समस्याएं हो सकती है। इसको विथड्रॉवल सिम्टम्स कहते हैं। ये विथड्रॉवल सिम्टम्स है बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन, हाथ पैर कांपना, नींद ना आना, अत्यधिक थकान महसूस करना जैसे लक्षण शुरू हो जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, कुछ टिप्स आपके लिए। शराब छोड़ने का पक्का निश्चय करें। उन परिस्थितियां एवं दोस्तों की संगत से बचें जो शराब

सेवन को बढ़ावा देते हैं। शराब के खाली बोतल, कैन आदि घर से बाहर फेंकते। जब ड्रिंक करने की संभावना लगे उस समय पहले ही खाना खा ले। पानी एवं अन्य तरल पदार्थ का भरपूर मात्रा में सेवन करें। एक हेल्थी डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए। अपना रूटीन बदल दे, हो सके तो अपना प्लेस भी बदल दीजिए। हार ना मानिए। यदि नशा छोड़ने में असफलता मिले तो पुनः कोशिश करें। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की उन पंक्तियों को हमेशा याद रखें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विद दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन एंड लाइंस, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 19वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 4:40 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम अब से थोड़ी देर बाद यानी 4:45 पर आप सुन पाएंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम बहारों की शाम।

तमिल कार्यक्रम का समय रहेगा 5 बजे और बांग्ला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 5:30 पर। किसान वाणी कार्यक्रम के तहत संध्या के 6 बजे महिला कृषक श्रीमती ममता कुसुन से बातचीत होगी। विषय रहेगा केले की खेती से लाभ। 6:30 पर कार्यक्रम रहेगा महफिले कवाली। 7:05 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम, जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे 7:15 पर। 7:20 पर सुनिए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 7:30 पर युवाणी के तहत आप सुनेंगे कार्यक्रम पत्रिका युवा संसार। विषय रहेगा झील प्रकृति का एक महत्वपूर्ण अंग। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का समय रहेगा 8:00।

8:30 पर रोजगार समाचार, तत्पश्चात सुनिए गौरव गान। 10 बजे सुनिए कार्यक्रम संदेश से आते हैं। इसके अतिरिक्त 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एटलाइन, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड, 9:45 पर इनसाइट, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 9:25 पर। 9:30 पर सुनिए अनमोल विचार। 9:55 पर सुनिए एग्री टिप्स कार्यक्रम, जिसमें 9:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम रामचरित मानस गान। 6:40 पर कार्यक्रम होगा गांधी चर्चा। मौसम की जानकारी, कार्यक्रमों का विवरण का समय रहेगा 6:50 पर। 6:55 पर संस्कृत में समाचार। 7:00 जन सूचनाएँ। 7:05 पर प्रादेशिक समाचार। 7:15 पर कार्यक्रम रहेगा देश रागिनी, जबकि 7:15 पर सुनेंगे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि 100.9 MHz पर कार्यक्रम होगा छाया गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान, जिसमें कानून की बातचीत कार्यक्रम में विषय रहेगा मध्यस्थता, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, भेंट करता होगी जयशीला। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे शबीर कुमार, पंकज उदास, आशा भोसले, अशोक घोसला। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का समय रहेगा सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्र संगीत के कार्यक्रम में आपको वीणा सहस्त्र बुधे खयाम का राग गावती सुनाया जाएगा। संदेश टू सोल्जर का समय रहेगा 10:00।

0: ये थे आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 4:45 हुए हैं। पेश है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम बहारों की शाम।
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, quiz-

0: 16, handicrafts, local heroes or hidden destinations. Your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
1: कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, जिसे संगीत दिया है अनु मलिक ने, लिखा है समीर ने, फिल्म का नाम है मुझे कुछ कहना है।

सोनू निगम के स्वर में श्रोताओं लीजिए सुनिए शरारत फिल्म का गीत। गीत के बोल समीर ने लिखे हैं, जिसे सुरों में ढाला है साजिद जावेद ने।

0: शरारत फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 5 बजने को है, पेश है तमिल कार्यक्रम।
1: ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி வழங்கும் தமிழ் அமுதம் வணக்கம் நேயர்களே.

0: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
1: বন্ধুরা, এর সঙ্গেই শেষ করব আমাদের আজকের বাংলা অনুষ্ঠান। প্রচারিত হলো আকাশবাণী শ্রী বিজয়পুরম কেন্দ্র থেকে। অনুষ্ঠান থেকে আমি অনন্যা আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, শুভ রাত্রি।
2: अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। श्रोताओं, पेश है किसान वाणी कार्यक्रम।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
4: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
5: पुतला बोल रहे?
4: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
5: मतलब?
4: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
5: परम तो सभी डाले हैं।
4: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
5: सच है?
4: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
5: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
6: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
2: नमस्कार, किसान वाणी के आज के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। किसान भाइयों, हमेशा की तरह आज के इस अंक की शुरुआत हम आज के खूबसूरत विचार से कर रहे हैं। भाइयों, हमारा आज का विचार है, जिस तरह एक पेड़ की खूबसूरती फूल और पत्ती पर निर्भर करती है, ठीक उसी तरह इंसान की खूबसूरती उसके विचार और व्यवहार पर निर्भर करती है। है ना भाइयों, बेहद खूबसूरत विचार। साथियों, हम अपनी खूबसूरती अपने व्यवहार से साबित कर सकते हैं। साथियों, इसी विचार को लिए हम आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। भाइयों, हमारा आज का प्रश्न है, लौंग में बुवाई के कितने वर्षों बाद फल लगते हैं, ये आपको बताना है। साथियों, प्रश्न एक बार फिर सुने, लौंग में बुवाई के कितने वर्षों बाद फल लगते हैं, ये आपको बताना है। साथियों, इस प्रश्न के उत्तर सोचते रहें और हमारे साथ कार्यक्रम में बने

0: रहें। कार्यक्रम के तहत इस प्रश्न का सही उत्तर हम आपको अवश्य ही बताएंगे। साथियों, प्रधानमंत्री द्वारा कई एक योजनाएं किसान साथियों के लिए चलाई जा रही हैं। हम कोशिश करते हैं कि इन योजनाओं के बारे में हर किसान को मालूम हो। प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना के संदर्भ में बात करते हैं। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत देश के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है, ताकि किसान भाई बड़ी आसानी से खेती में ट्रैक्टर का उपयोग खेती बाड़ी और खेती से जुड़े अन्य कार्यों के लिए कर सके और किसानों की जिंदगी में सुधार हो। दोस्तों, खेती बाड़ी में ट्रैक्टर एक ऐसी मशीनरी है जो फसल की उत्पादकता, उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि और संचालन के खतरे को कम करता है। तो आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना क्या है। इस प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक हालत में सुधार करना है, ताकि वे मशीनरी का उपयोग कर खेती बाड़ी के कामों को सरलता से कर अधिक से अधिक लाभ कमा सकें और उनकी रुचि भी कृषि में बनी रहे। अगर किसान भाई खुशहाल और आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे तो देश की कृषि विकास दर में लाभ होगा। कृषि विकास दर को ऊपर रखने के लिए सेंट्रल की सरकार तथा राज्य की सरकार कृषि उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार 20-50% सब्सिडी सीधे उनके खाते में प्रदान करती है। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना में यदि कोई किसान ट्रैक्टर खरीदना चाहता है तो वह सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। हालांकि उसे आवेदन संबंधी सभी शर्तों को पूरा करना होगा। ट्रैक्टर ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक की अधिकतम आयु 60 वर्ष तक हो सकती है। आवेदक की अधिकतम वार्षिक आय भी रखी गई है, जो अलग अलग राज्य द्वारा निर्धारित की गई है। फार्म मैकेनाइजेशन स्कीम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक हिस्सा है और इसे मिशन मोड में लागू किया गया है। तो आइए अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के क्या लाभ हैं। प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना में सीधे लाभ उन किसानों को होगा जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है और जो इन मशीनों का उपयोग कर अपनी आय में वृद्धि करना चाहते हैं। महिला आवेदकों को लाभ अधिक दिया जाएगा। किसान आवेदन पास होने के तुरंत बाद ट्रैक्टर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के आवेदन की स्वीकृति के बाद आप उसके साथ के औजारों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इन औजारों पर भी सब्सिडी देने का प्रावधान कुछ राज्यों ने किया है। योजना में किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन की सुविधा प्रदान की जाती है। बाकी पैसा किसान लोन के जरिए चुकता कर सकते हैं। यदि आप भी ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन करना चाहती हैं, तो आप भी प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन जनसंपर्क केंद्र या ऑनलाइन तरीके से कर सकती हैं।
1: प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना। साथियों, अभी आपने इस विषय पर जानकारी हासिल की। किसान साथियों, अब आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अट्टम पहाड़ की श्रीमती ममता कुशन जी के साथ, जो कि केले की खेती से लाभ कमा रही हैं। किस प्रकार से वो केले की खेती करती है, उनकी ही जुबानी सुनते हैं।
2: ममता जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार मैडम।
2: तो ममता जी, सबसे पहले आप श्रोताओं को अपने बारे में बताइए कि आपने ये केले की खेती की शुरुआत कब की थी और क्यों किया था आपने केले की खेती की शुरुआत।
3: हमने केले की खेती इसलिए करे है क्योंकि हम लोग को केला से सुविधा मिलता है, उनमें ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए, क्योंकि केले में बहुत मतलब आगे पैसा का जरिया ज़्यादा है। तो उसमें क्या है, हम लोग केले में जब केला गाड़ते हैं जो वो उगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, तो इसलिए हम लोग को उसी में फ़ायदेमंद ज़्यादा होता है।
2: जी जी।
3: तो हम लोग उसमें क्या है, ज़्यादा हम लोग को मेहनत भी नहीं करना पड़ता। तो उसमें हम लोग क्या है, केला पेड़ गाड़ते हैं, उसके अगल बगल क्या सब्जी वगैरह भी हम लोग गाड़ते हैं।
2: अच्छा, सब्जी भी गाड़ते हैं।
3: हाँ। तो उसमें हम लोग को मतलब खाने के लिए सब्जी मिल जाता है।
2: जी।
3: तो सब्जी केले मिल जाता है, केला का फूल मिल जाता है, मतलब
2: जी।
3: उसमें हम लोग का क्या है, बहुत पैसा का भी बचत होता है।
2: अच्छा जी जी। और केले की खेती आप किस प्रकार की मिट्टी और मौसम, मौसम का तो देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो मौसम कभी बारिश होती है, कभी धूप ज़्यादा रहता है, तो किस प्रकार का मौसम
4: ज़्यादा अनुकूल होता है इस केले की खेती करने के लिए।
3: तो हम लोग केले गाड़ते हैं, हम लोग पहला महीना नौवा महीना देख के ही गाड़ते हैं, और जब हम लोग केले गाड़ते हैं

0: है ना, उसके अगल बगल सुपारी पेड़ भी रखते हैं, तो उसमें हम लोग क्या केले के जो पत्ती काटते हैं, केले जब केला हो जाता है उसका पत्ती के पेड़ काटते हैं, सब हम लोग उसी का जड़ में डालते हैं, तो उससे खाद बन जाता है। तो बहुत सारा नारियल का छिलका जैसा डाब पीते हैं वो सब सारा लेके हम लोग केला के जड़ में डालते हैं, तो उसको खाद बन जाता है, तो उसमें हम लोग का पेड़ पौधा अच्छा होता है।
1: जी जी जी जी। और यहाँ की मिट्टी में ऐसा मतलब कोई दिक्कत नहीं आता है ना? मिट्टी तो
0: दिक्कत होता है, लेकिन उसके लिए हम लोग को कुछ जरिया ढूंढना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: कहाँ का मिट्टी में क्या चीज डालना होता, कैसा उगाना पड़ता। कभी हम लोग को ऐसा भी होता है कि पेड़ गाड़ के भी पेड़ का फायदेमंद नहीं होता, और ऐसा कभी होता है कि मौसम देख के की चीज का फायदेमंद भी होता है।
1: जी। और अच्छी पैदावार के लिए किन बातों के ऊपर विशेष ध्यान रखते हैं?
0: जो उसका जड़ में मिट्टी चढ़ाना पड़ता है तो हल्दी पानी छींटते हैं हम लोग।
1: जी।
0: गोबर खाद का इस्तेमाल।
1: अच्छा, हल्दी पानी से?
0: जी हाँ। अच्छा। उसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं आता,
1: नहीं आता है।
0: कभी बगीचा में क्या हम लोग आग जला के धुआं करते हैं, उसमें भी कीड़ा मकोड़ा का मतलब मर जाते हैं।
1: अच्छा। केले की फसल तैयार होने में कितना समय लगता है?
0: मैडम, केले का फसल तो रेडी होने में आपका 6 महीना लग जाता है।
1: 6 महीना लग जाता है। तो वो जैसे आपने बोला कि आप पहला महीना और नवा महीना देख कर करते हैं, तो
0: उसी तरह मतलब उसी दिन से हम लोग 6 महीना लेते हैं।
1: 6 महीना लेते हैं। ओके जी। और इस केले की खेती करने में आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है?
0: चुनौती ऐसा तो कुछ नहीं है मैडम, चुनौती तो देख के ही चलते हैं हम लोग।
1: जी।
0: फिर मैडम बगीचा भी केले के पेड़ भी रखे हैं, उससे भी हम लोग चलाते हैं। एक तो गाय भी रखी है, गाय से भी मतलब थोड़ा दूध का हो जाता है, तो सब्जी पेड़ का मिल जाता है थोड़ा।
1: जी जी जी।
0: केला फूल, केला सब्जी, ये सब में हम लोग मतलब उसी में तरक्की होती है।
1: और आपको ये केले की खेती की शुरुआत करने की प्रेरणा कहाँ से मिली?
0: प्रेरणा मैडम, जमीन है तो कुछ तो करना,
1: कुछ
0: है
1: करना था। जी।
0: तो हम लोग क्या है, कुछ कुछ पेड़ गाड़ते गाड़ते जब देखे केला का पेड़ गाड़े तो उसमें हमको फायदा जाता है।
1: अच्छा से हाँ।
0: बहुत जल्दी जल्दी फल देता है,
1: सुविधा
0: होता है।
1: जी।
0: तो इसीलिए मैडम हम लोग केले मतलब उसी टाइम से शुरू कर दिए
1: थे। अच्छा। और आप केले की कौन सी किस्म की खेती करते? केलों में भी अलग अलग प्रकार के केले होते हैं ना, तो उसमें आप कौन सी किस्म की केले की खेती करते?
0: केले गाड़ते हैं बोलने से चीना केला बोलते
1: जी,
0: सब्जी केला बोलते, फिर आरेक बर्मा केला बोलते हैं हम लोग, वही सब केला गाड़ते हैं, और दूसरा केला तो नहीं गाड़ते।
1: और आपके पास केले की खेती के लिए जमीन कितना है, कितनी जमीन में आप करते हैं?
0: 400 जमीन है।
1: 400 स्क्वायर मीटर। अच्छा जी। और इन केले की फसल में कभी कभी ऐसा होता है कि रोग, बहुत सारे रोग लग जाते हैं ना, तो इन केले की फसल में कौन कौन से रोग या कीट अधिक आते हैं और उनसे बचाव कैसे करते हैं?
0: केला पेड़ में मैडम जैसा अभी रोग दिखाई देता, जब केला पेड़ होता है ना
1: जी,
0: ऊपर में कीड़ा लग जाता,
1: कीड़ा
0: पेड़
1: लग
0: का पत्ती सूखने लग जाता
1: जी, जी।
0: तो पेड़ मोटा नहीं होता, पतले ही रहता, तो हम लोग वो पेड़ को काट देते हैं जड़ में डाल देते
1: जी,
0: तो वो पेड़ फिर नीचे से बच्चा आता है उसका।
1: अच्छा।
0: जैसे फिर
1: दोबारा बनता है। अच्छा। तो इस साल आपकी फसल कैसी रही?
0: बहुत अच्छी थी।
1: अच्छा, अच्छी बात है। और आप कटाई के बाद इन केलों की पैकिंग और बिक्री करते हैं?
0: बिक्री करते मैम, हाँ, दुकान में दे देते हैं।
1: और अपनी उपज को आप कहाँ बेचते हैं, स्थानीय बाजार, मंडी या सीधे व्यापारियों को दे देते हैं? जी। और इन केलों की खेती के लागत और मुनाफे के बारे में आप क्या कहना चाहोगी? मुनाफा कैसे आता है आपको?
0: मुनाफा तो अच्छा ही आता है।
1: और मौसम के बदलाव में केले की खेती पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: ठीक ही रहता मैम,
1: ऐसे कोई मतलब मुश्किलें नहीं आती है आपको मौसम से? क्या आप जैविक या ऑर्गेनिक खेती या प्राकृतिक खेती की कोई तकनीक अपनाते हैं? नहीं करते हैं। और आप ये केले की खेती, अगर कोई किसान अगर केले की खेती शुरू करना चाहता है तो आप क्या उनको कुछ सलाह देना चाहोगी?
0: जी हाँ, देते हैं।
1: क्या आपका क्या सलाह है उनके लिए?
0: उनके लिए हम जैसे करते हैं आप भी करो, जो आपको भी फायदेमंद आएगा।
1: फायदा होगा। हाँ। जी। और भविष्य में आपकी खेती को लेकर क्या योजनाएं हैं, और आप ये केले की खेती ही करना चाहती है कि उसमें आप और भी बढ़ाओगे कुछ?
0: नहीं, केला का खेती तो करते ही है मैडम, इसमें तो मतलब केला का खेती इसीलिए है, उसमें हमको केला का फूल मिल जाता है
1: जी,
0: सब्जी केला मिल जाता है
1: जी,
0: आजकल तो बाहर का सब्जी बहुत महंगा होता है
1: जी,
0: तो इसीलिए अपना बाग बगीचा में केले के पेड़ का संग संग सब्जी उगाते, फिर सब्जी वगैरह सब मिल जाता है, इसीलिए खेती रहेगा दूध
1: जी। तो आपके अनुसार केले की खेती में अन्य फसलों की तुलना केले की खेती ज्यादा लाभदायक है?
0: जी।

0: जी, और की अच्छी पैदावार के लिए किन बातों पर आप विशेष ध्यान देते हो?
1: अच्छा पैदावार के लिए विशेष ध्यान देते हैं मैम, पेड़ अच्छा रहेगा तो हम लोग को फल ज्यादा अच्छा मिलेगा। उनके संग संग हम गाय भी रखी
0: जी,
1: है
0: जी, जी,
1: तो उसमें
0: अच्छा।
1: क्या है दूध भी बेचते हैं।
0: अच्छा
1: तो,
0: गाय भी रखे हो आप,
1: तो उसी में हम लोग का मतलब गुजारा चल जाता
0: जी। अच्छा, तो अंत में हमारी श्रोताओं के लिए आपको कोई संदेश है कि अगर आपसे प्रेरित होकर वो भी इस आमदनी का जरिया अपनाए?
1: हाँ, जिनको अगर चाहे, अगर दिल है तो आके पूछने से हम लोग उस तरह
0: बताएंगे।
1: हाँ,
0: जी
1: बता
0: अच्छा, ठीक है। तो ममता जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: केले की खेती से लाभ, साथियों इस विषय पर अभी आपने बातचीत सुनी। अपने बारे में विस्तार से बता रही थी अट्टम पहाड़ की रहने वाली श्रीमती ममता कुशन जी। उम्मीद करते हैं कि इनकी बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। साथियों अब आइए कार्यक्रम का रुख करते हैं संगीत की ओर और सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों, खेत हो या बागान, सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है मिट्टी खाद के बारे में। खाद व उर्वरकों के प्रयोग में क्या कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, आइए इस विषय पर ले लेते हैं ये जानकारी।
1: किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनुष्य को अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन का लेना बहुत जरूरी होता है, यानी पोषक तत्वों का लेना बहुत आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार पौधों की अच्छी बढ़वार व अच्छी उपज के लिए उन्हें पोषक तत्व खाद तथा उर्वरकों के रूप में देना अत्यंत ही आवश्यक होता है। परंतु अब ये सवाल उठता है कि खाद एवं उर्वरकों की कितनी मात्रा पौधों को दे जिससे कि उनको कोई नुकसान न पहुँचे और मिट्टी की भौतिक दशा भी ठीक प्रकार से बनी रहे तथा साथ ही साथ किसानों को भी आर्थिक तौर पर मुनाफा हो। इसके लिए किसान भाइयों को कोई भी फसल जमीन पर लगाने से पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा लेना और ये जांच का कार्य कृषि विभाग की मिट्टी जांच प्रयोगशाला में निशुल्क होता है। मिट्टी की जांच के बाद मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों के आधार पर विभिन्न फसलों के लिए खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। मुख्य रूप से एक वर्षीय फसलों में फॉस्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा किसी भी फसल की बुआई व

0: रोपाई से एक या दो दिन पहले देना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की मात्रा दो बार में बांटकर देनी चाहिए। पहली मात्रा बुआई या रोपाई से 25 से 30 दिन बाद और दूसरी मात्रा फूल आने के समय में दें। फल रोपण व मसाले वाली फसलों की रोपाई के लिए बने गड्ढों में आधी सड़ी गोबर की खाद व आधी मिट्टी भरकर भर देना चाहिए। कच्ची खाद देने से गड्ढों में दीमक का प्रकोप होता है, इसके बाद ही उसमें पौधे लगाने चाहिए। इन पौधों में जब हम खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो इसे दो किश्तों में करते हैं, आमतौर पर मानसून के बाद और मानसून के शुरू होने से पहले। किसान भाइयों, इस बात पर विशेष ध्यान दें कि खाद व उर्वरक फल वृक्षों के अनुकूल हों तथा उनको इस प्रकार से दें ताकि पौधों की जड़ों में किसी प्रकार से हानि ना हो। उर्वरकों के प्रयोग के समय ध्यान रहे कि उर्वरक पौधों के कोमल अंगों व पत्तियों पर ना पड़े। पौधों से लगभग 60 सेंटीमीटर स्थान छोड़कर खाद को 25 सेंटीमीटर गहराई पर थालों की मिट्टी में भली प्रकार से मिला दें और अगर सूखे का मौसम है तो हल्की सिंचाई भी कर दें। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान दें कि छोटे पौधों को खाद कम मात्रा में देनी चाहिए, परंतु जैसे जैसे पौधे आकार में बढ़ते जाएं खाद की मात्रा को भी बढ़ा देना चाहिए। इसलिए किसान भाई, जमीन में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, पौधों की उम्र व फसल विशेष की खाद एवं उर्वरकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही इनका प्रयोग करें। उर्वरकों को दो तरीकों से फसल में दिया जाता है, एक तो मिट्टी में मिलाकर और दूसरा घोल के रूप में पत्तियों में छिड़ककर। घोल के रूप में उर्वरकों का प्रयोग तब करते हैं जब किसी पौधे में उर्वरक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। उस कमी को तत्काल दूर करने के लिए उर्वरक का घोल बनाकर पत्तियों पर छिड़कते हैं, जिससे कि आवश्यक उर्वरक की मात्रा तुरंत पौधों को उपलब्ध हो जाए। लेकिन इस संदर्भ में कुछ ध्यान देने की भी जरूरत होती है। पत्तियों पर छिड़काव के लिए जो उर्वरक का घोल तैयार किया गया है, इसके लिए बड़े कौशल की आवश्यकता होती है। अगर घोल तेज होता है तो पत्तियां नष्ट हो सकती हैं। घोल का छिड़कने का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि घोल का छिड़काव यदि तेज धूप में किया जाता है तो पत्तों पर गिरा घोल अधिक सूखने से गाढ़ा और तेज हो जाता है, इससे पत्ते जल सकते हैं। इस प्रकार बताई गई बातों को यदि ध्यान में रखकर आप खाद व उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आप लाभ कमा सकते हैं।
1: साथियों, अभी आपने खाद व उर्वरकों के प्रयोग में सावधानियां, इस विषय पर ये जानकारी हासिल कर रहे थे। अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। हमने आपसे पूछा था, लौंग में बुवाई के कितने वर्षों बाद फल लगते हैं। उम्मीद करते हैं किसान साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर सोच लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हम आपको बता दें साथियों, अमूमन 7 से 8 वर्षों बाद, लेकिन फल देने की पूर्ण क्षमता 15 वर्षों बाद ही प्राप्त होती है। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ने अपने उत्तर की जांच कर ली होगी। साथियों, अब घड़ी की तरफ देखिए, इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
4: अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 होने को है। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम महफिले कवाली। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म बैड बॉय से आवाज़ें हैं सोनू निगम और साथियों की, संगीत दिया है शायद अहमद ने और रचना अहमद रोज़ की है।

मोहम्मद अजीज, मजीद शोला, ऋषि कपूर और साथियों की आवाज़ों में आइए सुने नकाब फिल्म का गीत, रचना फारूक कैशर की और संगीत कमाल मखदूम का।

अनजान का लिखा आशद, भोपले का संगीतबद्ध किया ये है गंगा और सूरज फिल्म का गीत। गायक कलाकार है आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी।

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार गीत के बोल मजरू ने लिखे हैं।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 7 बजे हैं। आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें। सात बजकर 5 मिनट पर सुनिए प्रादेशिक समाचार।

7:30 पर सुनिए युवाणी कार्यक्रम, जिसके तहत सुनिए पत्रिका युवा संसार कार्यक्रम, जिसके तहत बातचीत का विषय रहेगा झील प्रकृति का एक महत्वपूर्ण अंग।

संगीत फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 9 बजे। नौ बजकर 30 मिनट पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात सुनिए गौरवगान।

0: ये थे आज के शेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: Indian Air Force invites eligible boys and girls from all islands of Andaman and Nicobar to join as Agnivir Vayu in OS stream. Open recruitment rally planned at Netaji Stadium, Rajiv Gandhi Nagar, Sri Vijayapuram from 31st August to 7th September 2026. For details, visit www.iefrecruitment.edcil.co.in.
2: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राजधानी श्री विजयपुरम में खेलो इंडिया संवाद के दौरान खेल प्रतिभाओं और युवाओं को मिला प्रेरणा का संदेश, इसके साथ ही जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की भी जानकारी दी गई। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में छात्रों ने प्रस्तुत किए समस्या आधारित तकनीकी समाधान, विशेषज्ञों ने रचनात्मक प्रतिक्रिया दी। और दक्षिण अंडमान जिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए 10 सितंबर तक होंगे पंजीकरण, प्रतियोगिता में 4 आयु वर्गों में होंगे मुकाबले।

सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि खेल केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विकसित भारत के निर्माण में देश की खेल प्रतिभा और युवा शक्ति को जोड़ने का अभियान है। उन्होंने कहा कि देश के हर जिले में विश्व के खेल मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि बच्चे की रुचि किस खेल में है, बल्कि यह भी पहचानना चाहिए कि वह किस खेल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। उन्होंने इसके लिए सरकार की ओर से हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। माई भारत श्री विजयपुरम की ओर से आज खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के खिलाड़ियों और युवाओं से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। सांसद विष्णुपद रे, दक्षिण अंडमान के उपायुक्त पूर्वा गर्ग, सूचना प्रसार एवं पर्यटन के सचिव विनायक चमाड़िया सहित माई भारत के

0: अधिकारी, युवा प्रतिनिधि, स्वयंसेवक और खेल प्रेमी मौजूद रहे। कार्यक्रम में खेल जगत से जुड़ी हस्तियों संध्या किस्पोटा, कर्मा टोपो और केपी मामू के साथ साथ भारतीय खेल प्राधिकरण श्री विजयपुरम के खिलाड़ियों और एथलीटों ने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री के वर्चुअल संवाद के बाद यूथ आइकॉन हरीश कुमार ने खिलाड़ियों के साथ परिचर्चा का संचालन किया। इस अवसर पर आकाशवाणी से बात करते हुए कयाकिंग और कैनोइंग के खिलाड़ी संध्या खिस्पोटा ने कहा,
1: तो सरकार ने इन 10 साल में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। जैसे पहले हमारे पास इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, इतनी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि खिलाड़ियों के लिए सरकार ने बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम लाए हैं जिससे खिलाड़ियों के लिए इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रही है, जिससे खिलाड़ी अपने आप को बेहतर प्रदर्शन के लिए अच्छे ट्रेनिंग मिल रही है इंटरनेशनल लेवल्स में। जैसे एथलीट को प्रैक्टिस करने कंपटीशन में जाने का मौका मिल रहा है इससे।
0: सांसद विष्णुपद रे ने प्रतिभागियों को स्वस्थ और नशा मुक्त समाज के लिए शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान सचिव विनायक चमाड़िया ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी दी।
2: बहुत सारी चीजें इन्फॉर्मेशन के रूप में अवेलेबल होती है, बट कंटेंट किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं वो उस चीज को बड़ा एम्पलीफाई करता है। कोई एक चीज, कोई एक जन नेचुरल ब्रिज के बारे में, मान लीजिए नील शहीद के बारे में बता रहे हैं, आप उसी चीज को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बता सकते हैं कि किसी की लालसा हो, किसी का मन करे कि चलो यहाँ पे आते हैं। बहुत कम लोग जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको बलिदान देवी के बारे में नहीं पता है। आप एक छोटा सा वहाँ के हैं, आप वहाँ का एक छोटा सा रील बना सकते हैं, छोटा सा कॉन्टेंट बना सकते हैं कि कितने लोगों ने यहाँ पे अपनी लाइफ सैक्रीफाइस करी थी फॉर आवर फ्रीडम स्ट्रगल। आपको ये नहीं करना चाहिए कि मैं इस पार्ट ऑफ अंडमान में रह रहा हूँ जहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है।
0: कार्यक्रम में डीब्रेड के करीब 700 और टैगोर कॉलेज के करीब 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को खेल, फिटनेस, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति प्रेरित करना तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना रहा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन और ताइक्वांडो चैंपियनशिप। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। समाचारों की ताज़ा जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम क्षेत्रीय समाचार एकांश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो करें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2026 आयोजित किया। इस हैकाथॉन में संस्थान के कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रिकल और सिविल विभागों की 6 अलग अलग छात्र टीमों ने भाग लिया। भाग लेने वाली टीमों ने अपने आइडिया और समाधान एक खास जूरी के सामने पेश किए। इस जूरी में सॉफ्टेक जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल हुए। जूरी के सदस्यों ने इनोवेशन, समस्या से जुड़ाव, व्यवहार्यता, तकनीकी और सामाजिक प्रभाव जैसे पैमानों पर मूल्यांकन किया। उन्होंने प्रतिभागी छात्रों को अपने आइडिया को बेहतर और मजबूत बनाने में सुझाव एवं रचनात्मक फीडबैक दिए। इस आयोजन ने छात्रों को रचनात्मक सोच, टीमवर्क, समस्या समाधान और प्रस्तुतीकरण विकसित करने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान किया। अंडमान एवं निकोबार ताइक्वांडो एसोसिएशन अंडमान एवं निकोबार राज्य ओलंपिक संघ के सहयोग से दक्षिण अंडमान जिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन करेगा। प्रतियोगिता में सब जूनियर कैडेट, जूनियर और सीनियर वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। राज्य ओलंपिक संघ के अनुसार प्रतियोगिता पहले 22 और 23 अगस्त को आयोजित होनी थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर 12 और 13 सितंबर 2026 को पुनर्निर्धारित किया गया है। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी, क्लब इकाइयां, विभाग और संस्थान 10 सितंबर तक निर्धारित गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का लिंक प्राप्त करने के लिए आयोजनकर्ता से 9933272629 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के ऑड सेमेस्टर के लिए विभिन्न डिप्लोमा कार्यक्रमों में अतिथि संकाय और अंशकालिक प्रशिक्षक के

0: पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। संस्थान की ओर से जारी सूचना के अनुसार 31 अगस्त को साक्षात्कार लिया जाएगा। किसी भी जानकारी के लिए अभ्यर्थी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संस्थान के अकादमिक सेल से 03192259818 पर संपर्क कर सकते हैं। श्री संजीव कुमार दास ने बीएसएनएल अंडमान और निकोबार सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के शिक्षा निदेशालय ने शारीरिक शिक्षा शिक्षक तथा स्नातकोत्तर शिक्षक शारीरिक शिक्षा के पदों पर भर्ती के लिए सूचना जारी की है। भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। श्री विजयपुरम में एक सामाजिक संस्था की ओर से विवेकानंद केंद्र विद्यालय लंबालाइन में थैलेसीमिया जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बोर्ड सर्टिफाइड जेनेटिक काउंसलर ने विद्यार्थियों को थैलेसीमिया, इसके अनुवांशिक पहलुओं, बचाव और समय पर स्क्रीनिंग के महत्व की जानकारी दी। प्रधानाचार्य ने आयोजकों का महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आभार व्यक्त किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राजधानी श्री विजयपुर में खेलो इंडिया संवाद के दौरान खेल प्रतिभाओं और युवाओं को मिला प्रेरणा का संदेश, इसके साथ ही जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की भी जानकारी दी गई। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में छात्रों ने प्रस्तुत किए समस्या आधारित तकनीकी समाधान, विशेषज्ञों ने रचनात्मक प्रतिक्रिया दी। और दक्षिण अंडमान जिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए 10 सितंबर तक होंगे पंजीकरण। प्रतियोगिता में 4 आयु वर्गों में होंगे मुकाबले। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम।
2: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
3: बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत।
4: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
1: बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी।
5: माझी पॉलिसी माझा हाथी।
1: बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक।
6: मारी पॉलिसी मारे हाथ।
1: बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर।
6: यन पॉलिसी यन कयल।
1: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1444 पर कॉल करें।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:17 हुए हैं। लीजिए सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के 1-2 स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 प्रति घंटा रहेगी। उधर मछुआरों को विशेष चेतावनी में कहा जाता है कि खराब मौसम के कारण अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। अथवा मछुआरों को

30 अगस्त तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। एमवी बारटंग मायाबंदर से डिगलीपुर की यात्रा पर कल सुबह 28 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा जलयान। अगली सुबह 29 तारीख को मायाबंदर से 7 बजे श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी नालंदा लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रात 9 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा जलयान। 29 तारीख को सुबह शाम 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापसी यात्रा करेगा। एमवी स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा जलयान। उसी रात 8 बजे 8:30 पर रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सुबह 28 तारीख को 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा जलयान। उसी दिन 8:30 पर शहीद द्वीप के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से जाएगा जलयान। उसी दिन 8:45 पर स्वराज द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम आएगा। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा जलयान। दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से वापसी यात्रा करेगा। जलयानों का यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुआ।

अब जन सूचनाएं, क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्रकृति सौंदर्य, प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुँचाना है। जन सूचनाएँ समाप्त हुई।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:31 हुए हैं। श्रोताओं, पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में, जिसे संगीत से सजाया है AR रहमान ने। रचनाकार है इरशाद कामिल, फिल्म का नाम है आई।

अगला गीत सुनिए जवानी फिल्म से, जिसे सुरों में ढाला है लता मंगेशकर और साथियों ने, धुन तैयार की है आरडी बर्मन ने।

जवानी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारे युवा भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम युवाणी।

0: युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लता राज नंदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस माह का चौथा गुरुवार है और आज के दिन हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
1: पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
0: दोस्तों, आज का युग तकनीक और संचार का युग है। स्मार्टफोन युवाओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इसके माध्यम से युवा शिक्षा, जानकारी, मनोरंजन और अपनी संवाद के अनेक साधनों से जुड़े रहते हैं। जहां स्मार्टफोन ने युवाओं के लिए नई संभावनाएं खोली हैं, वहीं इसके अत्यधिक उपयोग से कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। तो आइए दोस्तों, इसी संदर्भ में और भी जानते हैं दीपक कुमार सिंह की यह वार्ता युवा और स्मार्टफोन से।
2: नमस्कार दोस्तों। आज के वक्त में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और आज के वक्त में हम स्मार्टफोन के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के कई फायदे हैं, जैसे यह एक संचार का बेहतरीन माध्यम है। हम इसके द्वारा सोशल मीडिया या सामाजिक माध्यम से जुड़े रह सकते हैं। इसके द्वारा व्यापार को भी हम बढ़ा सकते हैं। स्मार्टफोन एक ज्ञान का भंडार है, जहां से लोग देश दुनिया के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि यह आपातकाल में सबसे मददगार होता है। परंतु दोस्तों, आज के दौर में हमारे युवाओं को इस स्मार्टफोन की आदत लग चुकी है और युवावस्था में ही युवाओं को कई बीमारियां भी होने लगी हैं। अक्सर युवा घंटों तक

0: मोबाइल फ़ोन में ही लगे रहते हैं। अब तो उनकी पढ़ाई, दोस्तों से बात और खेलकूद भी फ़ोन में ही हो जाता है। लेकिन हमें उनको समझाना चाहिए कि स्मार्टफोन उनके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। आजकल मोबाइल फ़ोन तो खाना खाने और सोने से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब स्कूल जाने वाले बच्चों के पास भी स्मार्टफोन रहने लगा है। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि बच्चों को युवावस्था उम्र में ही मोबाइल फ़ोन थमा देना उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए ठीक नहीं है, और युवावस्था में स्मार्टफोन ज़्यादा इस्तेमाल करने से कई परेशानियां हो सकती हैं, जैसे टीन टेंडोनाइटिस। यदि बच्चों को कम उम्र में ही मोबाइल दे दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि उन्हें मैसेज टाइप करने की लत तो लग ही जाएगी। वहीं ज़्यादा मैसेज टाइप करने से बच्चों को टीन टेंडोनाइटिस यानी TTT हो सकता है। इसमें गलत पोस्चर के कारण हाथ, पीठ और गर्दन में दर्द हो सकता है। इसके कारण नज़र भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा आजकल के युवाओं को तनाव भी ज़्यादा होने लगा है। पूरा दिन फ़ोन पर लगे रहने और मैसेज करने वाले युवा बाहर दोस्तों के साथ घूमने और खेलने बहुत ही कम जाते हैं। अध्ययनों की माने तो फ़ोन पर ज़्यादा समय बिताने वाले युवाओं में थकान और तनाव का खतरा रहता है। कुछ मामलों में मानसिक विकार भी हो सकते हैं, और कई युवाओं को नींद न आने की भी शिकायत होती है। अधिकतर युवा सोते समय मोबाइल फ़ोन को अपने पास ही रखते हैं। फ़ोन बजने पर बार बार नींद टूटती है और इससे युवाओं में नींद की कमी की समस्या होने लगी है। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के कारण युवाओं को युवावस्था में ही कैंसर जैसी बीमारी का खतरा भी हो सकता है। अध्ययनों में सामने आया है कि मोबाइल फ़ोन से निकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लंबे समय तक फ़ोन को पकड़े रहने पर ऊतकों द्वारा सोख ली जाती है। युवावस्था में तंत्रिका तंत्र का विकास हो रहा होता है, और इनमें वयस्कों की तुलना में मोबाइल फ़ोन के कारण ब्रेन कैंसर होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। आजकल के युवाओं के लिए किसी से बात करने के लिए अगर मैसेज करना ही एकमात्र तरीका रह जाए तो इस वजह से टीनेज बच्चों में एंग्जाइटी पैदा हो सकती है। दोस्तों से तुरंत रिप्लाई आना जहां खुशी देता है, वहीं घंटों इंतज़ार करने से चिंता बढ़ जाती है। दोस्तों, ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल ही बंद कर दें, पर इसके इस्तेमाल को नियंत्रित करके इन सारी बीमारियों से या इसके दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। जैसे कि युवाओं को फ़ोन लेने से पहले यह तय कर लेना चाहिए कि उन्हें उस स्मार्टफोन में कितना समय और पैसा खर्च करना है। उन्हें यह हिदायत देनी चाहिए कि दोस्तों के तुरंत रिप्लाई का इंतज़ार करना उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। पढ़ाई करते समय भी मोबाइल फ़ोन का बंद होना ज़रूरी है। सोने से पहले भी फ़ोन को ऑफ करने की आदत डालने को कहना चाहिए। युवाओं को समझाना चाहिए कि फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करने से कैंसर के जोखिम को कम किया जा सकता है। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि दिन में 20 मिनट से ज़्यादा फ़ोन पर बात करना उनके लिए सही नहीं है। युवाओं के लिए स्मार्टफोन का बहुत कम इस्तेमाल करने के लिए कहना और समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम उन्हें यह ना समझा पाए तो यह उनके लिए ही काफ़ी नुकसानदायक बात है। और दोस्तों, केवल युवाओं को नहीं, हम सभी को स्मार्टफोन, लैपटॉप जैसी चीज़ों से जितना हो सके उतना परहेज करना चाहिए। उनका कम से कम उपयोग करना चाहिए और ज़्यादा वक्त अपने परिवार और अपने दोस्तों से मिलकर बिताना चाहिए। धन्यवाद।
1: युवा और स्मार्टफोन। दोस्तों, अभी आप दीपक कुमार सिंह द्वारा यह वार्ता सुन रहे थे। दोस्तों, स्मार्टफोन हमारे जीवन को आसान बनाने का एक साधन है, लेकिन इसका सही उपयोग हमारी समझदारी पर निर्भर करता है। हमें यह सोचना होगा कि कहीं हम इस छोटी सी स्क्रीन की दुनिया में खुद को तो नहीं भूल रहे। शायद इसी आत्मचिंतन के साथ अपने मन में झांकना ज़रूरी है।

दोस्तों, प्रकृति ने हमें अनेक सुंदर और उपयोगी उपहार दिए हैं। पर्वत, नदियाँ, वन, समुद्र और झीलें प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं। इनमें झीलों का विशेष महत्व है। शांत और स्वच्छ जल से भरी झीलें न केवल देखने में सुंदर लगती हैं, बल्कि पर्यावरण के संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। झीलें वर्षा के जल को संचित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इनके जल का उपयोग सिंचाई, पशु पक्षियों तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए किया जाता है। झीलों के आसपास पेड़ पौधे और अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। मछलियाँ, जलीय पौधे और विभिन्न पक्षी झीलों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार झीलें अनेक जीवों के लिए प्राकृतिक आवास भी है। झीलें वातावरण को ठंडा और सुखद बनाए रखने में सहायता करती हैं तथा जैव विविधता को बढ़ावा देती है। उनकी प्राकृतिक सुंदरता लोगों को आकर्षित करती है, इसलिए कई झीलें पर्यटन के प्रमुख केंद्र भी हैं। झीलों के कारण स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, आज प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा, अतिक्रमण और जल की बर्बादी के कारण कई झीलों का अस्तित्व खतरे में है। झीलों में कूड़ा कचरा डालने से जल प्रदूषित होता है और जलीय जीवों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए हमें झीलों को स्वच्छ रखना चाहिए और उनके आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों, झीलें प्रकृति का अनमोल उपहार हैं। वे जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण और जीव जंतुओं की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं नवीन कुमार पांडे। युवाणी के इस रंगीन सफर में आज अपनी आवाज अपनी वाणी आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो चलिए इसका आगाज करता हूं कबीर जी के पवित्र दोहे के साथ, जो है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ता हूँ अपने पेशे की ओर। हालांकि यह मेरा पेशा नहीं है, पर पेशेवर कहलाता हूँ। जी हाँ साथियों, मेरी पहली कविता का शीर्षक है पेशे से कवि तो नहीं। पेशे से कवि तो नहीं पर कविताएं ज़रूर लिखता हूँ, पेशे से कवि तो नहीं पर कविताएं ज़रूर लिखता हूँ, नाम नवीन है तो क्या, नाम नवीन है तो क्या, अतीत का शौक रखता हूँ। हवाओं में लहराता हूँ बादलों की सैर करता हूँ, हवाओं में लहराता हूँ बादलों की सैर करता हूँ, फिजाओं की है चाहत मुझमें।

0: फिजाओं की है चाहत मुझमें, हर पल है मेरा, मेरी खुश नसीबी ढूंढता हूँ। पेशे से कवि तो नहीं, पर कविताएं ज़रूर लिखता हूँ। उगते हुए सूरज की सगाई में आशा की शहनाई सुनता हूँ। उगते हुए सूरज की सगाई में आशा की शहनाई सुनता हूँ। डूबते हुए सूरज की विदाई में बाबुल की दुहाई सुनता हूँ। पेशे से कवि तो नहीं, पर कविताएं ज़रूर लिखता हूँ। आज हूँ आपके बीच, कल कहीं और फिरता हूँ, मंजिल की साहिल की लालच में। आज हूँ आपके बीच, कल कहीं और फिरता हूँ, मंजिल की साहिल की लालच में। कश्तियों से सिफारिश करता हूँ। पेशे से कवि तो नहीं, पर कविताएं ज़रूर लिखता हूँ। अंधेर नगरी की माया जाल में दिए रोशनी की पूजा करता हूँ। अंधेर नगरी की माया जाल में दिए रोशनी की पूजा करता हूँ। खो जाने का डर कैसा, हाथों में लकीरें रखता हूँ। पेशे से कवि तो नहीं, पर कविताएं ज़रूर लिखता हूँ। जिस किसी से मिलता हूँ, रिश्तों की नींव रखता हूँ। जिस किसी से मिलता हूँ, रिश्तों की नींव रखता हूँ। जिस किसी से मिलता हूँ, रिश्तों की नींव रखता हूँ। जिस किसी से मिलता हूँ, रिश्तों की नींव रखता हूँ। कल वो कर सकते हैं याद मुझको। पागलों की इज्जत करता हूँ। पेशे से कवि तो नहीं, पर कविताएं ज़रूर लिखता हूँ। नाम नवीन है तो क्या, अतीत का शौक रखता हूँ। साथियों, मेरे पेशे से तो आप लोग वाकिफ हो ही गए होंगे, तो चलिए एक और सोच, एक कल्पना, एक खूबसूरती का वर्णन करता हूँ। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जब पहली बार चेन्नई से अंडमान के हवाई अड्डे पर उतरा, तो यहाँ की फिजाओं से मुझे मोहब्बत हो गई। पता है दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक मोहब्बत करने वाले को उसकी माशूका का दीदार हो गया हो। और हाँ साथियों, वो मजनू जिसे अपनी सरजमी, अपनी जन्मभूमि से मोहब्बत हो गई थी, वो मैं ही था। और अंडमान के हुस्न के जादू तो पूरे विश्व में चलता है, बस हम खुश नसीब हैं अंडमान वासी जो रोज़ इसका दीदार करते हैं। तो साथियों, मेरी इस कविता का शीर्षक है अंडमान तेरी हुस्न का दीदार। कसम है कुदरत के नूर की, उसके चमत्कार उसके हूर की, ना देखा है हुस्न का जादू ऐसा। कसम है कुदरत के नूर की, उसके चमत्कार उसके हूर की, ना देखा है हुस्न का जादू ऐसा। मेरे मौला, मेरे अंडमान, मेरे यार की, तेरी आँखों के समंदर में अजब सी गहराई नजर आई जब चाह कर डूबने लगा मैं। तेरी आँखों के समंदर में अजब सी गहराई नजर आई जब चाह कर डूबने लगा मैं, तो मेरी ही तस्वीर नजर आई। ख्यालों में गुम होकर बेकरार करती हो किसका इंतजार। ख्यालों में गुम होकर बेकरार करती हो किसका इंतजार। जानता हूँ मैं ही हूँ, पर नहीं एतबार। कभी तो करो अपने प्यार का इजहार। जानता हूँ मैं ही हूँ, पर नहीं एतबार। कभी तो करो अपने प्यार का इजहार, अपने प्यार का इजहार। बस साथियों, कहीं से यह पता चल जाए कि अंडमान को भी मुझसे प्यार है, तो बस हमारी बात बन जाएगी। आते जाते हैं दूर दूर से, करते हैं तुलना तेरी कोहिनूर से। आते जाते हैं दूर दूर से, करते हैं तुलना तेरी कोहिनूर से। उनके शब्द कम है ना करना एतबार। हम तो करते हैं तेरा बार बार दीदार। साथियों, ये तो मेरा प्रेम है मेरे अंडमान के लिए। क्या आपको अपने अंडमान से मोहब्बत है? अगली मुलाकात में ज़रूर पूछूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे स्वरचित कविताएं नवीन कुमार पांडे द्वारा।

क्या आपके ज़िले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर ज़िले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने ज़िले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा

0: राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने ज़िले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने ज़िले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ युवावाणी का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, जाते जाते हम आपको बता दें कि कल यानी शुक्रवार को हम युवावाणी कार्यक्रम के तहत आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आ रहे हैं रक्षाबंधन के अवसर पर विशेष कार्यक्रम रेशम की डोर। और दोस्तों, अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त लताराज नंदिनी को अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

अभी आप हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का गीत सुन रहे थे। अगला गीत सुनिए फिल्म हमारी बहू अलका से। गायक कलाकार है किशोर कुमार, बोल योगेश के और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में तैयार अनजान के लिखे गीत को स्वर दिया है आशा भोसले और समीर कुमार ने। फिल्म का नाम है हलाल की कमाई।

अमित कुमार और अलका याग्निक के स्वरों में अब सुनिए हमारी बहू अलका फिल्म का एक गीत, बोल योगेश के हैं, जिसे संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

फिल्म हलाकू से सुनिए अगला गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल शैलेंद्र के हैं और संगीत शंकर जयकिशन का।

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो, जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू दी एल्डरली पॉपुलेशन, कि एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एंजॉयमेंट पर्पज़ नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कॉन्टेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है। यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है। तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है, तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूँगा कि आप आएँ, इस पर कॉन्टेंट बनाएँ और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कॉन्टेंट बनाएँ, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं और इससे कैश प्राइजेज भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इट्सेल्फ एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो, सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
2: अभी आप चित्रपट संगीत कार्यक्रम सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। लीजिए सुनिए रोज का समाचार, तत्पश्चात सुनिए गौरव गान। पहले रोजगार समाचार। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी सिविलियन पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती के अंतर्गत असम के तेजपुर स्थित एयरफोर्स स्टेशन में लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी LDC का एक पद उपलब्ध है। इस पद के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। पूर्व सैनिकों को नियमानुसार वायु में छूट दी जाएगी। आयु में छूट दी जाएगी। 6 महीने या उससे अधिक की नियंत्रण सैन्य सेवा कर चुके पूर्व सैनिकों की वास्तविक आयु से उनकी सैन्य सेवा की अवधि घटाकर आयु की गणना की जाएगी। इसके अतिरिक्त अनुसूचित

जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि अनारक्षित पद के लिए आवेदन करने वाले एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को केवल जाति के आधार पर आयु में छूट नहीं मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति आवश्यक है। पद का वेतन 17वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक लेवल 2 के अनुसार होगा। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेजों की स्वसत्यापित प्रतियों के साथ अपना आवेदन एयर ऑफिस कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन तेजपुर असम 78404 के पते पर भेज सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार रोजगार समाचार के 1 से 17 अगस्त 2016 के अंक प्रकाशित भारतीय वायुसेना के विज्ञापन को देखें। रोजगार समाचार समाप्त हुआ। अब सुनिए गौरवगान।

अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब अगला कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ, भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें

0: शोली एक जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 9111230887818 और 9111230887819 पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप कॉल और संदेश के लिए 9199682919888 नंबर जारी किया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए 9779851386807 9779701075000 और 9779801032611 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार झील में अगले 3 दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की।
1: बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि नेपाल के देवघाट क्षेत्र में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि
2: नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है, सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है।
1: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त बचाव दल की 4 टीमें तैयार रखी गई हैं। इधर पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
4: Discussions are expected.
5: दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। इस पे व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। ये बातचीत भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगी।
4: स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल रिलेशनशिप।
0: ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से

भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला

0: की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशियंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
1: रक्षा मंत्री ने टैंक मरम्मत परियोजना को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और मानव कल्याण की प्रेरणा देते हैं। अहमदाबाद में आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और कौशल आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप हैं।
2: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं हैं तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं। और मन में स्वराज की ये परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
1: श्री शाह ने वर्ष 2047 तक सभी क्षेत्रों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। अहमदाबाद में फार्मा इनोवा अवार्ड्स 2026 में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
3: रजनी भाई ने शुरुआत की और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, आर्थिक मदद भी हुई। एक प्रकार से ये अवार्ड उनको एक्नोलेज करता है सोसाइटी में और इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने में। ये बहुत बड़ी बात है जो रजनी भाई ने उस जमाने में सोची।
1: गृह मंत्री ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है।
5: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। खेल दिवस के अवसर पर आज IFLU विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल से देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीत रहा है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो।
6: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
1: मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद

0: दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत के लिए इश्का ने 1 और नवनीत कौर ने 2 गोल किए। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लिन क्रिंग्स ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय। मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India steps up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to flash flood tragedy. 290 Indians among nearly 1300 missing people. Death toll rises to 359. Heavy rain likely over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan from Saturday. Defence Minister Rajnath Singh lays foundation stone for T-Series tank overhauling project at Jabalpur in Madhya Pradesh, terms it another milestone in nation's journey towards self-reliance. Government begins targeted release of onions from buffer stock to ensure adequate availability and moderate seasonal price pressures in coming months. And in men's cricket, second test between India and hosts Sri Lanka ends in a draw. Visitors clinch the series 1-0. And now the news in detail. India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the yesterday's massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of today. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Trishuli 1 project, as well as 21 people from Tamil Nadu. The ministry said that contact with 290 Indians have not been established so far. Addressing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Indian Embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted. Mr. Jaiswal said the Indian authorities are making all possible efforts in coordination with the Nepalese authorities to establish contact with the stranded Indians and ensure their safety.
2: Prime Minister yesterday spoke to the Prime Minister of Nepal, conveyed our deepest condolences, conveyed that India stands in solidarity with people of Nepal, as also offered all possible humanitarian assistance from our side.
1: Mr. Jaiswal said India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations. He said that India is also mobilizing Bailey Bridges to assist in

0: countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा, भारत की प्राचीन विरासत, सारनाथ की वैश्विक पहचान। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रोशन लाल गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: रोशन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: रोशन जी, सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि, इसे हम सांस्कृतिक उपलब्धि भी कह सकते हैं, साथ ही इसका सभ्यतागत और कूटनीतिक महत्व भी है, खास तौर पे ऐसे समय में जब भारत बौद्ध देशों के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो एक नई उपलब्धि हमारे पास आई है, तो सारनाथ इस पूरी रणनीति में एक महत्वपूर्ण सेतु बन सकता है?
2: बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने भी धरोहर हैं, लगभग 45 हैं जो यूनेस्को की सूची में आए हैं, और सारनाथ का यूनेस्को की सूची में आना बहुत बड़ी गर्व की बात है। वो इसलिए है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत ही भारत से हुई थी और भारत से शुरू होकर ये जापान तक गया। आज लगभग दुनिया की 7% आबादी ऐसी है जो बौद्ध धर्म को मानती है, और भारत को सारा क्रेडिट इसलिए जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म भले ही लुम्बिनी में हुआ हो, लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ, उनका निर्वाण भी कुशीनगर में हुआ, और जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में उन्होंने दिया। तो इस तरह से भारत के लिए ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि जहां से भगवान बुद्ध ने अपनी यात्रा शुरू की, अपनी धर्म की यात्रा, अपने उपदेशों की यात्रा उन्होंने शुरू की, वो यात्रा आज पूरी दुनिया में फैल गई है। तो इसलिए ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने कूटनीतिक तौर पर कहा, तो इस कारण जो भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं और जो धर्म है बौद्ध धर्म, उसके कारण पूरी दुनिया में और खासकर जो बौद्ध देश हैं
1: जी,
2: उनमें जो भारत की सम्मान है, अभी आपने देखा कि जापान के जो पूरा एक प्रतिनिधि मंडल आया था, जापान का एक गवर्नर और उनके साथ जो लोग आए थे, उन्होंने पूरा फोकस ही बौद्ध सर्किट जो है उन पर किया था। तो वो भी चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करें, जहां जहां बौद्ध हमारे स्तूप हैं, जो बौद्ध सर्किट हैं, वहां आए और उसका प्रचार करें आगे। तो ये कूटनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1: जी रोशन जी, सारनाथ वो स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और अब जाकर के इसे यूनेस्को की वैश्विक मान्यता मिली है। और हम ये भी देखते हैं कि भारत को बौद्ध दर्शन उसकी मूलभूमि के रूप में दुनिया के सामने हमेशा हम प्रस्तुत करते हैं, और ये भी देखते हैं कि दुनिया में कहीं भी अहिंसा और शांति की बात होती है तो हम इन भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो जो हमारा मूल दर्शन रहा है आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, उसका कितना महत्व है आज के समय में?
2: देखिए, आज तो बहुत ही अधिक है, इसलिए है कि सारी दुनिया में जिस तरह से एक कंपटीशन चला हुआ है, एक उपभोक्तावाद जो चल रहा है, अभी हमने देखा कि पश्चिम में किस तरह से युद्ध की स्थिति है, तो हम लोग सब यही चाहते हैं कि भगवान बुद्ध का जो संदेश

0: है कि अहिंसा होनी चाहिए, और उसी अहिंसा के लिए हमारे जितने भी हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं, जब वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं तो अहिंसा की बात करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने ही अहिंसा का हमें पाठ पढ़ाया है, और उसी अहिंसा के बल पर हम लोग जगह जगह जाकर उसकी वकालत भी करते हैं। और यूनेस्को ने जो अभी हमारी सारनाथ को जो यूनेस्को की लिस्ट में डाला है, उससे इस बल इसको जो अहिंसा का है उसको ज्यादा बल मिलता है कि सारी दुनिया अहिंसा की तरफ आए।
1: रोशन जी, भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो अब वो संख्या 45 हो गई, और हमारा देश वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर आ चुका है, जिसमें इटली सबसे ऊपर आता है। तो संख्या बढ़ना भारत के लिए कितना मायने रखता है, और फिर हमारे सामने एक ये भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम उसका संरक्षण बेहतर ढंग से करें, प्रबंधन अच्छा करें, ताकि और भी ज्यादा पर्यटक उसकी ओर आकर्षित हों।
0: हमारा इतिहास आप देखिए कि वेद काल से लेकर और वर्तमान तक हमारे भारत देश ने अनेक इतिहास देखे, और जब जब जो जो इतिहास ने जब जब करवट ली है वो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं किसी भी कोने पर एक सांस्कृतिक छाप छोड़ी है। आप महाभारत कालीन देखिए, रामायण कालीन देखिए, बौद्ध के समय के देखिए, आप वैदिक काल के समय के देखिए, तो जितनी हमारी साइट हैं, जितनी हमारी सभ्यताएं हैं, वो सब धीरे धीरे निकल रही हैं। तो जो अभी तक 45 साइट तो हो चुकी हैं, निकल चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा न जाने कितनी हैं जिन पर अभी ध्यान नहीं गया है, या जिनकी शुरुआती तौर पर अभी खनन चल रहा है। जब ये खनन हर जगह धीरे धीरे जब ये सरफेस पर आएंगी तो फिर इन साइटों की संख्या बढ़ेगी। मुझे लगता है कि इटली तो बहुत छोटा एक देश है
1: जी,
0: न जाने हमारे देश में कितनी ज्यादा साइट है जो अभी फोकस नहीं आई है। अभी जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो भी कोशिश कर रहा है कि जो छोटी छोटी साइट है अगर उनका उत्खनन सही करे और उनके बारे में अगर इतिहास में सही जानकारी मिल जाए तो वो फिर दावा करेंगे, फिर यूनेस्को में फिर हमारी लिस्ट जाएगी, और ये संख्या मुझे लगता है कि बढ़ती ही जाएगी। अभी तो 45 हुई है, ये और ज्यादा बढ़ने वाली है।
1: अभी आप जो दावा करने की बात कर रहे हैं, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ कि सारनाथ की यूनेस्को मान्यता की प्रक्रिया 1998 की अस्थायी सूची से शुरू हुई थी और जो 2026 में जाकर पूरी हुई है। ऑलमोस्ट 3 दशकों की ये यात्रा रही है। तो क्या यूनेस्को की प्रक्रिया इतनी जटिल है या इतनी लंबी है कि किसी भी स्थल की वास्तविक ऐतिहासिक और सार्वभौमिक महत्ता को प्रमाणित करने में समय लगता है?
0: मुझे लगता है कि ये तकनीकी है, क्योंकि 1998 में अस्थायी मान्यता तो मिल गई थी, लेकिन उसके बाद जब उनकी टीमें आती हैं, क्योंकि ये 196 देशों का संगठन है और उसका कोरम भी होना जरूरी है, तो 196 देशों को तैयार करना, उनको मनाना, उनके सामने ऐसे प्रमाण देना, फिर वहां से टीमें आती हैं, जब टीम आती है उसके बाद वो अपने सर्वे करते हैं, और सर्वे करने के बाद उनको तसल्ली हो जाती है कि हाँ ऐसी साइट और कहीं नहीं है और इससे बेहतरीन नहीं है, तब वो उसको मान्यता देते हैं। और मान्यता के देने के साथ फिर एक जिम्मेदारी भी हो जाती है कि जिस देश में ये यूनेस्को ने मान्यता दी है उस साइट का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, वहां एमिनिटीज कैसी होनी चाहिए, और जब वहां पर्यटक आए तो पर्यटकों के लिए सुविधा कैसी होनी चाहिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। फिर सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो वहां की म्युनिसिपैलिटी, उसका भी एक रोल जाता है कि हम उस साइट को इतना सुंदर बना दें कि जब भी कोई आए तो ये कहे हाँ ये यूनेस्को साइट है, तो यूनेस्को के स्तर की होनी चाहिए।
1: रोशन जी, यूनेस्को के मानदंडों में सारनाथ के आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से उसके प्रत्यक्ष संबंध को भी महत्वपूर्ण माना गया है। तो भारत की अपनी ये जो विरासत है दुनिया के सामने रख रहा है भारत, धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि दर्शन की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, मानव सभ्यता की भी बात करते हैं। भगवान बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं रही हो, उन्होंने जो भी अपने जीवन काल में लोगों को उपदेश दिए, जब वो सामान्य जन तक पहुंचाते हैं, तो भारत की अगर भूमिका की मैं बात करूं आपसे, किस तरह से भारत इस भूमिका को निभा रहा है?
0: देखिए, जो भारत की पारंपरिक तौर पर हम देखें तो हम अहिंसा के पुजारी हैं। अहिंसा के साथ साथ हम सबका सम्मान करते हैं। हम कहते हैं कि जो भी हमारे देश में किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी वर्ग का व्यक्ति रहे, हम सब समान है। और वही भगवान बुद्ध ने यही हमें सिखाया। उनका जो पहला उपदेश था कि जो दुख है, दुखों के बारे में उन्होंने 4 उन्होंने उपदेश दिए थे, और वो अगर कोई उन 4 उपदेशों को मान ले, दुख को मान ले, तो मुझे लगता है कि आधे दुख तो वैसे दूर हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने सम्यक की बात की, 8 सम्यक में उन्होंने कहा, तो अगर आप 8 सम्यक को एडॉप्ट कर लेते हैं, उनको आत्मसात कर लेते हैं, तो आपके दुख तो सारे दूर हो जाते हैं। तो वही चीज, वही बात हैं, हम उन्हीं उपदेशों को लेकर हम अपने जीवन में हमने आत्मसात कर लिया है। और जो भगवान बौद्ध को मानते हैं, जो बौद्ध देश है, वो तो इस बात को एडॉप्ट करते ही हैं, लेकिन अब इसको प्रचार करने की जरूरत है कि पश्चिमी देशों में, क्योंकि पश्चिमी देश अभी भी ऐसे हैं जो कि उपभोक्तावादी हैं, और वो भगवान बुद्ध के जो उपदेश दिए गए हैं उन पर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो अब हमारा, भारत की बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत से शुरुआत हुआ, लेकिन जो बड़े देश हैं, चीन है, जापान है, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इनकी ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं, वो ज्यादा, उनकी संख्या ज्यादा है, तो वो भगवान बुद्ध के उपदेशों को लेकर पश्चिम तक जरूर जाएं।
1: रोशन जी, अब मतलब सारनाथ से पहले लुम्बिनी बोधगया भी यूनेस्को की सूची में शामिल

0: हो चुके हैं। ये ऐसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो लोगों के लिए बड़े मायने रखते हैं, लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। तो इन स्थलों को जोड़ करके क्या एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट विकसित करने की आवश्यकता है जो धार्मिक पर्यटन के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को भी एक नई दिशा दे?
1: देखिए, भारत सरकार इसमें इस तरफ काम कर रही है बौद्ध सर्किट के लिए अभी भी है, लेकिन इसको और ज्यादा करने की जरूरत है। जो नेपाल में लुम्बिनी और उसके बाद बिहार में बौद्ध गया और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है और सारनाथ में उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर और जो सारनाथ है वो लगभग आसपास है। तो यहाँ बौद्ध सर्किट बनाने की बात है और चल भी रही है। जिस तरह से कि भारत सरकार ने रामायण सर्किट बनाया कि नेपाल से लेकर और भगवान राम के जहां जहां उनके कदम पड़े वहां वहां तक, तो रामायण सर्किट है, तो उसी तरह से बौद्ध सर्किट भी है। मुझे लगता है कि इस पर अगर और फोकस किया जा रहा, अब तो और भी हमारी जरूरत हो गई है, क्योंकि अब सारनाथ को जब यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर लिया है तो हमारी जिम्मेदारी और हो जाती है, ताकि जो दुनिया का धार्मिक पर्यटन है वो पर्यटक और हमारे देश में आए और भगवान बुद्ध के उपदेश सीखे। और पर्यटन का जब लाभ होता है तो आर्थिक तौर पर भी लाभ होता है, तो मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है इससे।
0: अगर हम सरकार के प्रयासों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस बात का जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण पर बड़ा जोर दिया है। श्रोताओं की जानकारी के लिए हम ये बता दें कि मार्च 2026 तक 1,19,00,000 से अधिक पांडुलिपियों की सूचना मिलने की बात कही गई है। तो ये जो डिजिटल संरक्षण किया जा रहा है, इससे आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारी जो ज्ञान की परंपरा है उन तक पहुंचाने के लिए, या फिर जो मूल उनकी जानकारी थी, मूल जो सूचनाएं थी, मूल आदर्श हो या जो भी महत्वपूर्ण बातें रही उन तक पहुंचाने के लिए?
1: देखिए, जितनी हमारी सभ्यताएं मिली उनमें सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उनकी भाषा, उनकी जो लिपि थी उनको पहचानना। तो लिपि को पहचानने में कई साल लगे और अभी भी हमने पूरी तरह से लिपियों को नहीं हम ढूंढ पाए। बौद्ध धर्म की जो लिपि है पाली, पाली को भी पूरी तरह से नहीं उसका हम खोज पाए हैं, लेकिन अभी तक जितना खोज पाए हैं उसके अनुसार से वो उपदेश आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये पांडुलिपि जहां जहां मिल रहे हैं और जहां जहां मिलेंगे, मुझे लगता है कि केवल ये जानकारी नहीं है, जो हमारा वर्तमान है और जो भविष्य की नीतियां बनेगी वो भी उस आधार पर बननी चाहिए। जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो वर्तमान पीढ़ी है और हम आने वाली पीढ़ी है, वो हमारे जो पुरातन है उससे सीखें। और इसलिए उन पांडुलिपियों के लिए सरकार ने ये मिशन चलाया है कि जो लिपियां जहां मिले उनको कैसे संरक्षित किया जाए, उनका डिजिटलीकरण किया जाए और सबसे पहले कि उसका दस्तावेज बनाया जाए।
0: रोशन जी, एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 के तहत निजी क्षेत्र, CSR और अन्य संस्थाओं को विरासत संरक्षण से जोड़ा जा रहा है, तो एक ये महत्वपूर्ण पहल कही जा सकती है। आपके विचार में क्या निजी भागीदारी से स्मारकों की सुविधाएं और प्रबंधन बेहतर हो सकता है, या फिर इसमें चीजों को और बढ़ावा देने की जरूरत है?
1: मुझे लगता है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये बहुत ही अच्छा कदम है। और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है कि जो भी CSR के तहत या कोई NGO अगर आना चाहता है तो हमारी जो आर्कियोलॉजिकल साइट है इन स्मारकों के आसपास आप साफ सफाई कर सकते हैं, आप यहाँ टॉयलेट बना सकते हैं, आप यहाँ सौंदर्यकरण कर सकते हैं, उनके जो पार्क है उनको मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सारा काम सरकार के ऊपर छोड़ देंगे तो इतना पैसा, इतना धन कहाँ से आएगा? तो इसलिए निजी क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है और उनके पास चूंकि CSR का पैसा होता है तो उसका अपना एक खर्चा वो वहां डालें और जो हमारी साइट है वो सुंदर भी बनेंगे और जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है और इसमें और लोगों को शामिल करने की जरूरत है।
0: व्यक्ति विशेष, कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, कोई भी स्कूल या कॉलेज या कोई भी इस तरह का संस्थान वहां पर जाकर बात कर सकता है कि हम इसमें कुछ मदद कर सकते हैं आपकी, यहां पर हम ये करना चाहते हैं। सौंदर्यीकरण एक अच्छा कार्य होता है, मैंने देखा है कि बहुत सारे कॉलेजेस इस काम को प्रमोट करते हैं।
1: हमारे पास NCC है, हमारे पास NSS है, इसके तहत भी हो सकता है। वैसे भी आप जाते हैं आसपास शहरों में या कहीं गांव में आकर सफाई करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी अगर किसी इमारत जो स्मारक है उस स्मारक को साफ सुथरा करने में अगर किया जाए तो मुझे लगता है कि वो भी एक नवाचार होगा। तो जो बिजनेसमैन है वो अपना पैसा लगा सकता है, कंपनियां हैं वो अपना पैसा लगा सकती हैं, और जो इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति है, आपने देखा बहुत सारे लोगों का स्वभाव होता है वो सुबह सुबह जाके सफाई करते हैं,
0: कहीं
1: उन्होंने कचरा देखा उसको उठा लिया, तो ऐसे लोगों के ग्रुप होते हैं जो RWA है, उनको भी शामिल करना चाहिए। मुझे लगता है कि फिर गवर्नमेंट का जो सारा बर्डन, जो सारा बोझ सरकार के ऊपर पड़ता है वो कम से कम बट जाएगा।
0: रोशन जी, 2014 के बाद की मैं बात कर रहा हूं तो भारत लगभग कुल 669 पुरावशेष वापस ला चुका है। तो ये भी माना जाता है कि जो चीजें भारत से बाहर चली गई, जिन्हें चोरी किया गया या फिर किसी और तरीके से ले जाया गया, उन्हें वापस लाया जा रहा है। तो ये भारत की सांस्कृतिक संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विरासत के दावे को मजबूत करने की एक कूटनीतिक उपलब्धि है। तो सरकार के इन प्रयासों को आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, जो कि हमारी विरासत बहुत ही समृद्ध है और इस विरासत में हमने देखा है कि हम जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था तो विदेशों से आके बहुत सारे लोगों ने यहाँ के मूर्तियां हैं, यहाँ की जो विरासत है उसकी चोरी की या उसको ले गए। तो भारत सरकार ने जब कोशिश की कि कैसे अपनी विरासत को वापस लाया जाए, और अभी जैसे आपने बताया कि करीबन 650 से ज्यादा हम ला चुके हैं, तो दो

0: सेवा, एक तो हम अपनी सभ्यता को, अपनी विरासत को वापस लाने में सफल हुए, और दूसरा हमारा कूटनीतिक प्रयास भी तो है कि भारत सरकार ने दूसरी सरकार से, जिस देश में वो है वहां से संपर्क किया, दोनों के बीच एक संपर्क जब स्थापित हुआ और वो माने और उन्होंने दिया, क्योंकि बहुत सारे देशों ने, ऐसे भी हो सकते हैं जो कहें कि हम नहीं देंगे, क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जो 3,000 साल पुराने, 4,000 साल पुराने, 1,000 साल पुरानी चीजें हैं, मूर्तियां हैं, तो उनका एक अपना महत्व है, तो उस महत्व का अगर हम वापस अपने देश लेके आ रहे हैं तो हम अपने जो हमारे पीढ़ियां हैं, नई नई पीढ़ियां, उनको भी समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि ये चीजें हमारी विरासत इतनी समृद्ध थी।
1: रोशन जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा और इसका उत्तर आप बड़ा संक्षेप में मुझे दें कि भारत ने बौद्ध विरासत के जो पवित्र अवशेष हैं ये विभिन्न देशों में ले जा करके वहां लोगों को दर्शन के लिए उपलब्ध कराए हैं, ये एक बड़ी अच्छी मुझे पहल लगती है, आप इस पर क्या कहेंगे?
0: देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपने धर्म का प्रचार करना है, अपने भगवान बुद्ध के देशों का प्रचार करना है, तो आपने भगवान बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष, उनको लेकर आपको जाना पड़ेगा, तभी तो लोग समझेंगे इसमें ये क्या चीज है, कौन है, उनके बारे में सीखेंगे, और तब उस धर्म का प्रचार हो गया, उनके उपदेशों का, खासकर जो अहिंसा के बारे में उन्होंने बातें कही हैं, तो उसका प्रचार होगा, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी पहल है।
1: रोशन जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, भारत की प्राचीन विरासत, सारनाथ की वैश्विक पहचान। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रोशन लाल गौड़, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। कंट्री वाइड।

0: of this year's focus on speed, scale and system.
1: Addressing the Global 21st Sustainability Summit today, Union Minister Shivraj Singh Chauhan also highlighted the significance of the contribution of sustainable agriculture towards India's sustainability goals. Let's listen to what he said.
2: सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की अगर बात करें, बिना एग्रीकल्चर के दुनिया चल नहीं सकती। और मध्य प्रदेश के अपने अनुभव से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अकेली एग्रीकल्चर भी इकोनॉमी बदल सकती है। मध्य प्रदेश ने पिछले कई वर्षों तक 18% से लेकर 22% तक एग्रीकल्चर ग्रोथ हासिल करके

श्रोताओं, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम संदेश से आते हैं में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए। हमारा नंबर है 9474234000। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9474234000। कार्यक्रम का पहला संदेश आया है सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। शिवा प्रेम कपिल शिवान संगीता लिपि दीपाली का ये श्रोता सुनना चाहते हैं बार बार देखो फिल्म का ये गीत।

अगला गीत सुनिए, रमेश चंद्र मोहिनी कल्पित बेबी गर्वी की पसंद का। ये श्रोता सुनना चाहते हैं रेशम की डोरी फिल्म का ये गीत।

0: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners, starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
1: अनपल फिल्म के गीत के लिए हमें संदेश आया है नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर निर्मला नहावकर विशाल का, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमा, हसन बाबू, अहमद मिश्रा, नवाज, बेबी चाहत का हमें संदेश आया है। ये श्रोता सुनना चाहते हैं नाइट इन लंदन फिल्म का ये गीत।

शमशीद बेगम की आवाज़ में सुनिए अगला गीत, जिसकी फरमाइश हमें की है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र, जय नारायण, तरुण और प्रतीक ने। फिल्म का नाम है काजल।

राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में सुनिए सिंग इज़ किंग फिल्म का गीत, जिसकी फरमाइश हमें की है उत्तर प्रदेश से अरफान सलाम ने। तो लीजिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए, भाग जॉनी फिल्म से, जिसकी फरमाइश हमें की है महाराष्ट्र से शंकर लाल जयकिशन लाल और सुभाष प्रसाद ने। तो लीजिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, संदेश से आते हैं कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। उधर मछुआरों को विशेष चेतावनी में कहा जाता है कि खराब मौसम के कारण अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। अतः मछुआरों को 30 अगस्त तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। मौसम की जानकारी समाप्त हुआ। इस समय रात्रि के 10:31 और 55 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की छठवी तिथि, तदनुसार 28 अगस्त सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:28.37 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा में हम अपने सभी श्रोतागण का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: अनमोल विचार।
1: धन का सदुपयोग जीवन को सुखी बनाता है। सोच समझकर रुपए पैसे खर्च करना एक अच्छी आदत है। अब प्रश्न ये है कि कैसे पैसे खर्च किए जाएं, कैसे हम मितव्ययी बने। कहा गया है, पैसे कमाना आसान है परंतु उसे खर्च करना एक मुश्किल कार्य है। अब दूसरी बात पर आते हैं जो खर्च करने को नियंत्रित करने के विषय में है। कहते हैं, केवल उन्हीं चीजों को खरीदो जिनकी आवश्यकता हो, ना कि उन चीजों को जिसे तुम चाहते हो। मन की चाहत या आवश्यकता में अंतर करना हमारे सद्विवेक पर निर्भर करता है। अपने स्वविवेक का इस्तेमाल कर हम बहुत से फिजूल खर्ची को रोककर जीवन में मितव्ययता को अपना सकते हैं।
0: ये था अनमोल विचार और अब श्रोताओं, आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। आगाज मातृ वंदना के साथ।